सुप्रभात श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आज दिन रविवार है। सक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और आज सुबह 10 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 8 सेकंड हो रहे हैं। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना से। प्रस्तुत है आप सभी के लिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। जिस प्रकार सूरज की प्रकाशमय किरणें रात के घनघोर तमस को मिटा देती है, उसी प्रकार ईश्वर के स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर की अज्ञानता दूर हो जाती है। उस परम शक्ति को याद करते करते सुनते हैं हरिहरन की आवाज़ में लयबद्ध किया हुआ ये भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी की आवाजों में सुंदर सा भजन। कार्यक्रम में भक्ति गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई

0: या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में सुरबद्ध किया हुआ ये प्यारा सा भक्ति गीत।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे नितिन मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा भजन। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है अमर वाणी।

0: परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद।
1: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
0: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्।
1: हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं।
0: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
1: हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
0: भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुतदुहित्रिकलत्रत्राण भारावृतानां विषम विषयतोये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुतदुहित्रिकलत्रत्राण भारावृतानां विषम विषयतोये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्।
1: भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।

0: रत्वं सरसि जदिशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यं भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वं सरसि जदिशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से अमरवाणी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज प्रातः 6:40 पर भक्तिभाव श्रोताओं के लिए श्री रामचरितमानस से संगीतमयी पाठ का प्रसारण किया जाएगा।

प्रातः 6:55 पर आप रूबरू होंगे देश दुनिया की खबरों से, जिसका प्रसारण किया जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में। प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, और समाचार खबरों का सिलसिला पुनः जारी किया जाएगा प्रातः 8:00 हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के रूप में। उर्दू प्रेमियों के लिए खबरनामा प्रातः 8:30 पर, और हमारे लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर।

सुगम संगीत का आनंद आप श्रोताओं ले सकेंगे प्रातः 9:50, दोपहर 12:55 पर और शाम 8:15 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा अपराह्न 1:50 पर और शाम 6:10 पर।

फिल्म संगीत प्रेमियों के लिए कार्यक्रम पूर्वा सुहानी प्रातः 7:31 पर, हिट्स सुपर हिट्स प्रातः 8:45 पर, गीतांजलि 11:30 पर, गीत सुहाने दोपहर 12:30 पर, गीत मंजरी 12:45 पर और एक ही फिल्म से शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे। लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 11:05 पर एवं शाम 6:45 पर।

महिलाओं और बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंच आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00। श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 10:05 पर।

भोजपुरी भाषा प्रेमियों के लिए भोजपुरी समाचार शाम 6 बजे एवं भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर, ग्राम जगत शाम 5:35 पर और हिंदी कार्यक्रम शाम 8 बजे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रसारित की जाने वाली चंद कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए श्री रामचरितमानस से संगीतमयी पाठ।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमयी पाठ। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। इसी के उपरांत आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे हिंदी में समाचार और प्रातः 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
5: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन R.N. रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वंद्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+ धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167

0: का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global centre of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and VD Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala chief minister, and the name will be announced very soon. Union Home Minister Amit Shah will chair a high-level meeting in New Delhi today to review the country's preparedness for dealing with possible floods and heatwave conditions. During the meeting, Mr. Shah will assess the readiness of central government agencies, review early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss to property. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the labour codes. The Ministry of Labour and Employment said the reforms aim to ensure timely payment of wages, mandatory remittance of social security contributions, greater accountability of contractors and principal employers, and stronger enforcement mechanisms against violations of labour laws. Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. In IPL cricket, today Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In the second match of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
3: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर मैदान फतेह।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से अब होगा आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश सप्ताह के सातों दिन, यानी हर सुबह 10:05 पर और रिकॉर्डिंग रोजाना सुबह 11 से 12 तक। हमारे टेलीफोन नंबर 0551225386 पर कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत सात के सातों दिन सिर्फ आकाशवाणी गोरखपुर से हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हेलो फरमाइश हर सुबह 10:05 पर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर मैदान फतेह।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से अब होगा आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सप्ताह के सातों दिन यानी हर सुबह 10:05 पर, और रिकॉर्डिंग रोजाना सुबह 11 से 12 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर 0551225386 पर कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत सात के सातों दिन सिर्फ आकाशवाणी गोरखपुर से हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हेलो फरमाइश हर सुबह 10:05 पर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोता, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन

0: प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इको सिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है ये 20 दिवसीय और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।

0: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्मकुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: श्रोताओ, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी के कुछ सुपरहिट गीत। तो आइए सुनते हैं काजल फिल्म से ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत है रवि का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वसुहानी में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत फिल्म कभी कभी से। संगीतकार हैं खय्याम और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

0: गुमराह इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, संगीत था रवि का और बोल थे साहिर लुधियानवी के। श्रोताओं आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्व सुहानी में आइए सुनते हैं हमराज फिल्म से ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीत है रवि का और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

हमराज इस फिल्म से अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया था महेंद्र कपूर ने। श्रोताओं, आप आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरवा सुहानी। आइए सुनते हैं ताजमहल फिल्म से ये गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया है लता मंगेशकर ने, संगीत है रोशन का और बोल हैं साहिल लुधियानवी के।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: मेरे जीवन साथी, इस फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत को सुरबद्ध किया था किशोर कुमार ने, संगीत था आर डी बर्मन का और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी यही संपन्न होता है। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटका विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता

0: पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक, बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor.
9: and 9 Indian boxers advanced to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and

0: Faizan Marat, Tanvi in 43 kg, Hanshika Atri in 46 kg, Sunaina in 58 kg, and Bhumika in 61 kg also registered RSC victories, while Anzi claimed a dominant 5-0 win in the 37 kg category and Sonia cruised to a 5-0 victory in 40 kg. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. The Statesman highlights Suvendu Adhikari sworn in as Bengal CM, while the Times of India adds NDA show of strength as Suvendu sworn in as first BJP CM of Bengal. Hindustan Times. Prime Minister bows, thanks voters, notes the pioneer. Numbers in order, Vijay to be TN Commander-in-Chief, notes Hindustan Times. The Statesman headlines, TVK crosses final hurdle for majority, secures IUML's VCK's support for forming Vijay Sarkar. Agni 5 tested, capable of multiple nuclear strikes, cites Hindustan Times. India tests advanced Agni missile from Odisha coast, reports the Pioneer. The Asian Age reports, Lieutenant General Raja Subramani appointed as next CDS, Swaminathan to helm Navy. The Tribune reports, Pak China affairs experts, Lieutenant General Raja Subramani picked up as next CDS, Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, returns set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled, Giving Them Roots, the Indian Express mentions inspiring stories of motherhood, pointing motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the art of living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के क्याम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के क्याम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीर शुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और अहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी दही तरक्की

0: राहुल गांधी, पार्टी की रियासती सदर, रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश जैनीथाला और वीडी सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोर्ट्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों, महकमों, आइनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रा वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत, हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोज़ा उजरत, 15 दिन ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मज़ीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानी का एक जामे टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरोस्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तावुन से तैयार किया है। इस कंबस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज़ में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।

0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है, जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में वाके नेल्सन आइलैंड का दौरा किया, जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबैगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज़ कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुँच गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला के अहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार BJP की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफ़ी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वज़ीर आज़म का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज़ करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमायाँ तौर पर शाया किया है। सभी अखबारात ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिज़ाइल के कामयाब तजर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इजरायली फ़ौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गाँव को खाली करने का हुक्म।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। TVK के सरबराह सी जूसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने N रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ओस की बूंदों से भीगी इस हसीन सुबह में आप सभी का इस्तकबाल है। सुबह का वक्त खुदा की इबादत जैसा होता है और संगीत से बड़ी इबादत और भला क्या होगी। कहते हैं कि जो बात लफ्ज नहीं कह पाते वो सुर कह देते हैं। परिंदों की चहचहाहट है, हवाओं में रवानी है, खुदा का शुक्र है कि फिर एक नई कहानी है। शुरू करते हैं सुरों का ये सफर दिल लगी के साथ, क्योंकि संगीत ही तो रूह की असली जुबानी है। आइए आज की इस ताज़ा सुबह को सुरों के उजाले से रोशन करते हैं। स्वागत आप सभी का मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है म्यूजिकल दिल लगी, 8:46 और 40 सेकेंड। आइए इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज, जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं, जिनकी आंख थोड़ी देर से खुली कि आज के दिन को हम खुशियों के साथ बिताने वाले हैं।

सलामी इस फिल्म से अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए सुनते हैं अगर तुम ना होते इस फिल्म से ये गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं RD परमन। तो आइए सुनते हैं अगर तुम ना होते फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

साजन, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल थे समीर के और संगीतकार थे नदीम श्रवण। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स में आइए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार हैं आर डी बर्मन और फिल्म है सवेरे वाली गाड़ी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स। इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म रुदाली से। आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा हुआ यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार हैं भूपेन हजारिका का।

0: श्रोता आप सुन रहे थे रुदाली फिल्म से ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित सामयिक चर्चा।
1: पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
4: धन्यवाद ओम जी।
3: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
4: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें ये भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
3: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
4: हम लोगों ने 3 जनपदों में जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीटेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहीपुरवा वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
3: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
4: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स की गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनकी भी गणना की जाती है और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
3: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
4: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या।

0: नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है। और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप को यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पांस फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते।
1: जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे, तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहां आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयंगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोगों के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए, और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं, इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी

0: ये तिथियां हैं, बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे, अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे, और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना। खास बातचीत वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खुसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी। कार्यक्रम में शिरकत की है मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरूल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून ने, और मेजबानी शमशुल आरफीन की है।

आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप समात फरमा रहे थे खुसूसी उर्दू प्रोग्राम बैदबाजी। कार्यक्रम में शिरकत की थी मुमताज़ पीजी कॉलेज लखनऊ की कमरुल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून ने। मेज़बानी थी शमशुल आरफीन की और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी।

श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:50 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए सुगम संगीत कार्यक्रम। आज के फनकार हैं जगजीत सिंह। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गीत।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
5: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
4: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आज के फनकार थे जगजीत सिंह। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला एकल टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम का आज संचालन किया है अपर्णा त्रिपाठी ने और प्रस्तुत करता है नूर मोहम्मद। तो आइए सुनते हैं हेलो फरमाइश।
4: फाइव फाइव वन टू टू जीरो फाइव थ्री एट सिक्स। हेलो
5: हेलो
4: हेलो
6: हेलो
4: हेलो फरमाइश।
7: हेलो फरमाइश।

0: फरमाइशों की महफिल सजी है, सुरों का रंग निराला है, फिल्मी गीतों के संग आज हर दिल झूमने वाला है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त अपर्णा हाजिर हूं लेकर आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम, और देखते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रामनगर वाराणसी से लंबे बाबू खान बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मुझे फिल्म खिलौना गाना, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल छोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं बनारसी साड़ी बुनता हूँ।
0: बनारसी साड़ी बुनाई करते हैं आप बनारसी साड़ी की?
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी। और फिर उसको बाहर भेजते हैं?
1: जी,
0: उसको फिर बाहर भेजते हैं बेचने के लिए?
1: नहीं नहीं, मैं दूसरे घर जाया करता हूँ, वो लोग मतलब बाहर भेजते हैं, हम नहीं भेजते।
0: अच्छा अच्छा,
1: हम एक कारीगर टाइप है।
0: जी जी,
1: साड़ी बुनते हैं, इसकी कीमत 30,000 रुपया है।
0: जो साड़ी आप बुनते हैं?
1: हाँ जी हाँ, 30,000 रुपये की मतलब बेचते हैं लोग बाजार में।
0: अच्छा, और आपको कितना मिलता है?
1: मुझे 7,000-7,500 रुपया मिलता है एक साड़ी पे।
0: एक साड़ी पे आपको 7,000-7,500, फिर वही साड़ी मार्केट में 30,000 में बिकती है?
1: जी हाँ, तो मतलब उनका रेशम मौसम जितना मतलब जरी उरी सब उनकी लगती है।
0: अच्छा, सामान उनका होता है?
1: जी हाँ, खाली हमारी मेहनत होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें और कौन कौन है आपके साथ इस काम में आपको सहयोग करने के लिए?
1: एक एक हेल्पर लगा रहता है साथ में।
0: जी,
1: दो आदमी मिलकर बनाते हैं।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पे ये गीत।
1: धन्यवाद मैम, नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी
1: जी, हम गोरखपुर से बोल रहे हैं, सूरजपुर से।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: जी आरिफ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम तो सर एम काम करके घर पे काम कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: दीनदयाल उपाध्याय से हमने एम काम किया है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइए कि कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मोहब्बत का कोई भी गाना सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: तो हम सुनवा रहे हैं आपको मोहब्बत फिल्म से ये गीत। चलिए, कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
2: विनय कुमार बिन मंसी, मंडीदीप राजन, एमपी से।
0: एमपी से
2: जी मैडम।
0: जी, क्या करते हैं आप?
2: मैडम टेक्सटाइल धागा कंपनी में काम करते हैं मैडम।
0: अच्छा अच्छा, जो सिलाई वाला धागा होता है
2: जी, ये कॉटन वाला।
0: हाँ हाँ,
2: और रुई रुई से बनती है धागा।
0: अच्छा अच्छा, धागा बनाने का क्या प्रोसेस है?
2: जी मैडम, प्रोसेस यही कपास आता है, कपास से रुई तो हाँ। इसका बेल आता है
0: जी।
2: तो उसका कॉटन का बस धागे बन के साइड के ये साइड कहीं और बनता है, लेकिन यहाँ से धागा जाता है।
0: तो कपास हाँ। आपके एमपी में मिलता है?
2: हाँ हाँ, यहाँ कपास की खेती वगैरह भी होती है, कपास रुई की बंडल भर भर के आते हैं, तो मशीन से धागा बनता है, हम मेंटेनेंस काम करते हैं मैडम।
0: मौसम कैसा है वहाँ का?
2: मौसम तो अच्छा ही है मैडम।
0: अच्छा अच्छा,
2: हाँ ये धूप निकली है मैडम।
0: कौन सा गीत सुनेंगे
2: मैडम? ताकत फिल्म का गाना है, ये पत्थर पे लिखी कोई तकदीर है, ऐसे करके कुछ गाना है मैडम, बहुत अच्छा गाना है।
0: हम सुनवाते हैं फिर आपको आपकी पसंद पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कसबा कसबा तहसील नवाबगंज झुमका सिटी बरेली से।
0: बरेली से जी, बताइए।
1: और दीदी कैसी हो?
0: जी हम अच्छे हैं। कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: हमें सुनवा दीजिएगा दलाल मूवी का।
0: जी कौन सा?
1: मारगा मारगा खोकत में कोई हमको लियो बचाए, मेरे दिल पे ऐसा तीर चला। और दीदी उधर मौसम कैसा है?
0: जी मौसम इधर अच्छा है। हम सुनवाते हैं आपको दलाल फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी। मैं तकिया मणिया हूँ, जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ मैम।
0: अहमद शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बताइए, और सब ठीक ठाक है?
0: सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप कैसे हैं?
1: जी हम तो अच्छे हैं मैम, बढ़िया है, ठीक ठाक है।
0: जी, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: जी, गाना एक है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है,
0: जी।
1: और फिल्म का नाम है दो रास्ते, और गाने को बोल थोड़ा सा मैं इसको गुनगुना दे रहा हूँ मैं।
0: एकदम एकदम।
1: ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे?
1: मैं देवकर, छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से संतोष केसरी।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैम गाना सुनना था।
0: जी कौन सा गाना सुनेंगे?
1: वो आराधना फिल्म का है, गुनगुना रहे हैं भौरे फिर रही है कली कली।
0: बहुत अच्छा गीत, क्या करते हैं आप?
1: हाँ मैं शू सेंटर का काम करता हूँ मैम।
0: शू सेंटर पे
1: चप्पल का दुकान है जी। और मैं अपने भाइयों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जरूर लीजिए।
1: कोदवा साजा से राम स्वरूप गुप्ता है और भतीजा विवेक गुप्ता है
0: जी।
1: और श्री नारायण से मेरी बेटी है मोनिका केसरवानी, दामाद योगेश केसरवानी
0: जी। जी
1: मेरे पुत्र है शुभम केसरवानी, मेरी लड़की है प्रियंका केसरवानी
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरी पत्नी है उर्मिला केसरवानी।
0: तो आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पे आराधना फिल्म से ये गीत। कॉल किया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका नाम श्रोता अशोक सिंह।
0: अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कैसी हैं आप, अपनी आकाशवाणी टीम गोरखपुर की?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, मौसम मस्त है, धूप बढ़ने लगी है, पारा भी बढ़ने लगा है। मैडम गाना सुनना है
0: जी, कौन सा गाना?
1: धूप में निकला न करो गिरफ्तार।
0: गिरफ्तार जी जी जी अपने बारे में बताएं कुछ।
1: मैं मैडम रिटायरमेंट हूँ, रहने वाला शहजानपुर का हूँ।
0: जी जी जी
1: तो इनकम टैक्स के सर्विस करता था, 2.5 साल से सभी चैनलों से जुड़ा हूँ, आपके भी कार्यक्रम सुनता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी तारीफ करे अच्छा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद पे गिरफ्तार फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: हाँ
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ हम नागेंद्र चौहान बोल रहे हैं, पादरी बाजार गोरखपुर से। हाँ
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका नागेंद्र जी। बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: हमको धर्म कांटा का एक गोटेदार लहंगा निकलू जो डाल के, मैडम
0: बहुत अच्छा जी।
1: जी सुनवा दीजिए।
0: हाँ जी, हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: पर क्या करते हैं, हम तो रहने वाले बिहार के हैं, यही डेयरी वेरी चलाते हैं।
0: डेयरी चलाते हैं?
1: हाँ 4-5 गो गाय रखे हैं, दूध बेचते हैं।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: यहाँ आपका घर होगा फिर?
1: वही तत्काल जवाहरलाल इंटर कॉलेज का मैं चौकीदार हूँ,
0: अच्छा,
1: बच्चे
0: वाह,
1: मेरे 2 हैं, एक प्लम्बर है एक वेल्डर है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पे धर्मकांटा फिल्म से ये गीत।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: श्रोताओं, इसी तरह से आप हमें कॉल करते रहिए और सुनते रहिए अपने पसंद के गीत। हमारा टेलीफोन नंबर है 2205386, एसटीडी कोड 0551। इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको बता दूं कि आज के हमारे कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा मोहम्मद कैसुद्दीन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। और अब अपनी दोस्त अपर्णा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: 0551220538 6। हेलो
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आज के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद और संचालन किया था अपर्णा त्रिपाठी जी ने। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौत खानोवा को हराया। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ज तथा FM 100.1 मेगा हर्ज पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 11:05 और 17 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग। आज के लोकगीत कलाकार हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में सुरबद्ध किए गए चंद पारंपरिक लोकगीत।

0: लोकगीत के कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: लोक रंग के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी।
7: विद्या

Lega e Macharia.

जाई कहो अपने प्यारे देवारी से, प्यारे देवारी से हो।

मेरा जी करे जाई अरजी करे अपने साधु से

याहू लिसानी करलिया स्नान मैया याहू लिसानी राज राज कर माई सोरा हो सिंगारी।

मारे उचार बेद तू हरे अगानवा ब्राह्मण उचार बेद तू हरे अगानवा ब्रह्मा विष्णु कर नित्य तू हरो पूजनवा ब्रह्मा विष्णु कर नित्य तू हरो पूजनवा देवगढ़ गावे मंगल चार की सवनिया।

జనమా దేవగాడగా

0: ब्रह्मा विष्णु कार्य नित्य तुहरो पूजन देवगण गावे मंगल चार की सवनिया है मैया जागो।
1: लोक रंग कार्यक्रम में आज के कलाकार थे राधे श्याम मणि त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: ये गीत था फिल्म सिंग इज किंग से, जिसे गाया था श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने। संगीत था प्रीतम का और गीत के बोल लिखे थे मयूर पुरी ने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

ये जो गीत आप सुन रही हैं, ये गीत है फिल्म पाप से, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। संगीत है शाही का।

ये गीत है फिल्म आजा नचले से, जिसे गाया है राहत फतेह अली ने। संगीत है सलीम सुलेमान का और गीत के बोल हैं जयदीप के।

0: ये गीत था फिल्म आई हेट लव स्टोरी से, जिसे गाया था राहत फतेह अली खान ने। संगीत था विशाल शेखर का और गीत के बोल लिखे थे कुमार ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
9: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
8: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
9: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: ये गीत था फिल्म झूम बराबर झूम शराबी से, जिसे गाया था महालक्ष्मी अय्यर और राहत फतेह अली खान ने। संगीत था शंकर एहसान लॉय का और गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। गीतांजलि में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बालमंच, जिसे लेकर आ रही हैं मेनका श्रीवास्तव।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल मंच।
2: जय हिंद बच्चों,
3: जय हिंद दीदी।
2: ढेर सारी बातें, गीत, कहानी, कविता, पहेली के साथ आप सभी का आज के बाल मंच कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं रैंपस स्कूल के बहुत ही प्यारे प्यारे और होनहार से बच्चे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने साथ लाए हैं ज्ञान, उत्साह और ढेर सारी प्रतिभा। इनकी मुस्कान, इनकी बातें और इनकी शानदार प्रस्तुति आप सभी का दिल जीत लेगी। तो चलिए जोरदार तालियों से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची बैठी हुई है जिसकी दो चोटी मुझे बहुत दूर से दिखाई दे रही है। आपका नाम क्या है?
4: दीदी मेरा नाम विरांका सिंह है और मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
2: भाई आप सब अपना नाम और अपना क्लास बताइए मुझे।
5: दीदी मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ।
2: पढ़ने में मन लगता है?
5: हाँ दीदी।
2: कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है?
5: मैथ।
2: क्या बात है, ये तुम्हें आसान लगता है?
5: हाँ दीदी।
2: अब आप अपना नाम बताइए।
6: दीदी मेरा नाम न्यासा यादव है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
7: मेरा नाम हुमैरा यूसुफ है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
8: मेरा नाम अदिति पाल है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
9: मेरा नाम अपर्णा गुप्ता है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
2: और मैं हूँ आप सबकी मेनका दीदी। जोरदार तालियां हो आज के कार्यक्रम के लिए। बच्चों आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हर जगह है, हमारी बॉडी में भी है, सूरज में है, हवा में है, पानी में है, हर जगह है। क्या नाम है उसका?
3: ऊर्जा।
2: बहुत सही, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो कौन बताएगा मुझे कि एनर्जी क्या है?
7: दीदी मैं बताऊं?
2: एनर्जी के बारे में बताएगी हमें हुमैरा। तो चलिए आप सब भी सुनने के लिए तैयार रहिए।
7: ऊर्जा यानी एनर्जी वह शक्ति है जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर ऊर्जा ना हो तो ना हम चल सकते हैं, ना कोई मशीन काम कर सकती है और ना ही धरती पर जीवन संभव है। ऊर्जा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, ये सब हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिक इतिहास में थॉमस यंग ने सबसे पहले एनर्जी शब्द दिया। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा को मापने की इकाई जूल दी और बताया कि ऊर्जा अपना रूप बदलती है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ से ऊर्जा बनाने का सिद्धांत समझाया।
2: बहुत बढ़िया जानकारी दी, जोरदार तालियां हो। अच्छा बच्चों ये बताइए कि हमारे घर में जो पंखा, एसी और टीवी चलता है, इसके लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए?
10: विद्युत ऊर्जा।
2: बिल्कुल। और पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं?
11: सूर्य ऊर्जा,
10: सूर्य के प्रकाश से।
2: बिल्कुल
4: दीदी। पौधे पानी से भी बढ़ते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। और हम लोग जो भी काम करते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
3: हमारे भोजन से।
2: कौन सी चीजें पसंद है? पिज्जा, बर्गर।
4: दीदी मुझे मोमोज पसंद है।
2: अरे वाह,
4: मैं खा के

0: मुझे भी मोमो पसंद है
1: भाई। मोमोज तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, है ना?
2: हाँ दीदी।
1: अच्छा हेल्दी फूड आप लोगों को पसंद है?
2: हाँ दीदी।
1: ग्रीन वेजिटेबल खाते हो सब लोग?
2: हाँ दीदी।
1: दूध पीते हो सब लोग?
2: हाँ दीदी।
1: वेरी गुड। क्योंकि देखिए आप सब छोटे हैं, आप सबको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। आपको बड़ा होना है, आपको पढ़ना है, आपको खेलना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो आपको भाई पिज्जा बर्गर और मोमोज आपको बंद करना पड़ेगा खाने के लिए। और जो भी मम्मी बनाती है घर का खाना खाइए और हेल्दी फूड खाइए, तब आप हेल्दी रहेंगे, है ना?
2: हाँ दीदी।
1: तो हम वापस अपने विषय पर आते, हम बात कर रहे थे एनर्जी की। तो एनर्जी वो चीज है जो हमें हर काम करने की ताकत दे, है ना?
3: हाँ।
1: तो आपको पता है ये कितने तरह की होती है, कोई बताएगा?
0: एनर्जी बताओ।
1: बताएगी हमें अदित्रि।
0: एनर्जी बहुत तरीके की होती है, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा।
1: और आपको पता है ये सब एनर्जी के रूप हैं और इससे क्या होता है,
4: हमारा जीवन आसान होता है।
1: ये सब हमारा जीवन आसान करते हैं। इसके सोर्स क्या क्या है, कहाँ से मिलती है हमें एनर्जी, कौन बताएगा हमें?
0: दीदी मैं बताऊँ?
1: हाँ बताओ।
0: यह सब स्रोत हमें सौर ऊर्जा, सूर्य के प्राप्त बिजली से मिलती है, पवन ऊर्जा पवन चक्रियों से मिलती है, और जल ऊर्जा बहते हुए पानी से मिलती है, बायोमास जो पौधों और जैविक कचड़ों से प्राप्त ऊर्जा होती है,
1: और इसके अलावा हमें ऊर्जा कोयले से, पेट्रोल से और गैस से भी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको ये बताना है कि हम इनका सही से यूज कैसे कर सकते हैं। जब ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसकी बचत भी बहुत जरूरी है ना। ऊर्जा की बचत कैसे कैसे कर सकते हैं?
3: दीदी मैं बताऊं?
1: हाँ बताओ।
3: ऊर्जा की बचत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। जब हम अपने कमरे से बाहर निकले तो हमें लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए।
0: दीदी पानी बचाना भी ऊर्जा बचाने का एक तरीका है।
1: और हम कैसे बचा सकते हैं?
5: और पेड़ पौधे लगाकर भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सब लोग बहुत ही ज्यादा नष्ट कर रहे हैं।
1: और
3: हमें एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए।
1: और इन सब चीजों के अलावा एक चीज और है जो बहुत जरूरी है, वो कौन बताएगा? ये बता रही है लंबी छोटी वाली, है ना? चलो बताओ।
6: दीदी हम लोग सोलर पैनल लगा के भी बिजली बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
4: और हमें आसपास की जगहों पर जाने के लिए कार या मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल का उपयोग करना चाहिए।
1: हम पैदल भी चलें जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। हम साइकिल भी चलाएं और हम पैदल भी चलें तो हमारा क्या बचेगा, हमारा डीजल और पेट्रोल बचेगा। इससे भी ऊर्जा बचेगी। भाई आप सब तो बहुत बुद्धिमान, पढ़ाई में सबका मन लगता है।
2: हाँ दीदी।
1: बहुत बढ़िया। और अब हम यहाँ पर सुनेंगे एक गाना। आप सब गाना सुनना चाहेंगे?
4: हाँ दीदी।
1: इतना धीरे से बोलोगी?
2: हाँ दीदी।
1: चलिए अब हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: एक बार फिर से बाल मंच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है रैंपस स्कूल के बहुत ही प्यारे प्यारे और होनहार से बच्चे। तो ये गीत आप सबको पसंद आया?
1: हाँ दीदी, पसंद आया।
0: तो चलिए अब हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आप सब ने आज के कार्यक्रम के लिए क्या क्या तैयारी की है। कुछ तैयारी करके आए हो?
1: हाँ दीदी।
0: और ये जो हमारे साथ बैठा हुआ है बड़ा ही प्यारा सा बच्चा उत्कृष्ट, कह रहा है कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कुछ तैयारी करके आए हो कि बस ऐसे ही?
2: मैं गाना तैयार करके आया हूँ।
0: गाना घर पे सीखते हो या स्कूल में ही सीखते हो?
2: मैं स्कूल में सीखता हूँ।
0: मम्मी नाराज नहीं होती है?
2: नहीं।
0: और कौन सा गाना तैयार करके आए हो?
2: रचा सृष्टि।
0: चलो स्टार्ट करो।

0: बहुत बढ़िया गीत था वेदांतिका और उत्कृष्ट ने ये गीत हमें सुनाया। इस गीत में हमें क्या क्या बताया गया, कोई बताएगा? किसी ने ध्यान से सुना है इस गीत को? कौन बताएगा?
1: मैं बताऊंगी। इस गीत में बताया गया है, जिस प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है, हमें भेजते ये तय कर दिया था कि हमें वापस आना है।
0: सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में इस गीत में बताया गया है, जो हमें इस धरती पर भेजता है और कहता है कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया गीत था, एक बार फिर से जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। अच्छा उत्कृष्ट, आज इसको मोमोज नहीं मिले हैं खाने के लिए, इसे ही मोमोज बहुत पसंद है ना?
2: मुझे मोमोज उतना पसंद नहीं है, मैं बस खाता हूँ।
0: बस खा लेते हो, रोज खा लेते हो?
2: नहीं, बहुत कम खाता हूँ।
0: बहुत कम, तुम्हें तो मम्मी के हाथ का खाना पसंद है ना? मम्मी क्या बहुत अच्छा बनाती है?
2: बहुत सी चीजें हैं।
0: अरे एक चीज हमें भी बता दो।
2: जैसे पनीर चीज़।
0: अब तो तुम्हारे घर आना पड़ेगा चिली पनीर खाने के लिए, खिलाओगे?
2: ठीक है।
0: चलिए ठीक है, हम बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। और किसी की क्या तैयारी है, कौन बताएगा?
1: दीदी दीदी मैं कविता तैयार करके आई हूँ।
0: हाँ तो चलो, हम सब भी सुनने के लिए तैयार है।
1: सूरज देता तेज अपार, फिर भी हम है लाचार, कोयला जलाए धुआं फैलाए, अपना जीवन खुद ही मिटाए, छत पर सोलर आज लगाओ, अंधकार का अंत कराओ, मुफ्त की ऊर्जा जो गवाओगे, आने वाले कल पछताओगे, वृक्ष धरा के प्राण कहलाए, इनसे जग में प्राण समाए, स्वार्थ हेतु तो जो इन्हें मिटाए, सासों का ऋण वो कैसे चुकाए, शीतल वायु द्वार से जाए, बिल देख फिर होश ना आए, आज नहीं अगर पेड़ लगाए तो कल लित कल्प होगी, तेल पराया मोल चुकाए, भारत का धन बाहर जाए, दो पग चलने में शर्माए, व्यर्थ धुआं नव में उड़ाए, साइकिल से नाता जोड़ो, पैदल चलना सीखो, आज नहीं जो नीति बदलोगे कल अभाव में नित कल्पोगे, जल से ही जग का अस्तित्व, जल बिना मिटे सब व्यक्तित्व, बूंद बूंद कर व्यर्थ बहाए, आने वाली पीढ़ी रुलाए, जल पर संयम आज लगाओ, हर एक जल कड़ बचाओ।
0: तो इस कविता में तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई कि हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, पर आप छोटे हैं, आप सब पैदल चलते?
1: दीदी हम लोग साइकिल चला

0: बचाते हैं।
1: चलो, और पानी बचाते हो?
0: हाँ दीदी, बचाते हैं। दीदी जब हम ब्रश करते हैं तो हम टैप को बंद रखते हैं, ना कि उसे खुला छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और ये नन्हे मियाँ, तुम क्या करते हो पानी बचाने के लिए? कुछ नहीं करते हो
2: दीदी। हाँ? मैं पानी बचाने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करके फिर पौधों में डालती हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां हो इसके लिए। तुम भी सोच लो, पानी बचाने के लिए कुछ करते हो?
2: हमें शावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बकेट में पानी भर के उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और कौन क्या तैयारी करके आया है?
3: दीदी मैं कविता की तैयारी करके आई हूँ।
1: चलो स्टार्ट करो तुम भी कविता।
3: क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन के लिए हमारे पूरे घर की बिजली खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? शायद सब कुछ ठहर जाएगा। और यही सोच आज हमें सचेत करती है कि ऊर्जा है जीवन की शान, इसके बिना सब है वीरान। बिजली पानी ईंधन सारे, संभालो इनको ये है प्यारे, अब बचत करना है जरूरी, वरना होगी बड़ी मजबूरी। आज बचाओ कल मुस्काओ, धरती माँ को स्वर्ग बनाओ, क्यों करें हम इतनी बचत, हमें तो चाहिए हर सुविधा की आदत। पानी बहे तो बहने दो, लाइट जले तो जलने दो, आज का मजाक क्यों छोड़े हम, कल की चिंता क्यों करें हम? सोच बदलो, यही है वक्त, वरना होगा भविष्य सख्त। प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसके बिना हम असीमित नहीं, ऊर्जा बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सच्ची समझदारी। आओ मिलकर कसम ये खाएं, ऊर्जा संरक्षण को अपनाएं। और इस कविता की सीख में मैं बस यही कहूंगी कि आज बुझाओ एक फालतू लाइट, कल जगमगाएगा पूरा फ्यूचर ब्राइट।
1: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और बच्चों, अगर आज आप बदलेंगे तो कल आपका भविष्य चमकता हुआ दिखेगा। जोरदार तालियां हो जाए भाई। सब लोग सिर्फ कविता ही कविता लेकर के आया है, कुछ और भी है किसी के पास?
3: दीदी मैंने तो तैयारी की थी लेकिन मैं भूल गई।
1: भूल गई?
3: हाँ।
1: मम्मी से कहो जरा बादाम दिया करें, थोड़ी मेमोरी तेज होगी। कौन कौन बादाम खाता है?
4: तो मैं खाती हूँ।
1: चीजें याद रखने के लिए क्या करना होगा हमें? आज तो मान लीजिए आप कविता भूल गई, कहानी भूल गई, एग्जाम में अगर कुछ कोई क्वेश्चन भूल जाएगा तो क्या करोगे
2: दीदी? उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: और क्या करना होगा?
4: और पढ़ने के बाद रिवीजन करना होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, रिवीजन बहुत जरूरी है।
2: आप अगर वो भी नहीं करेंगे तो आप चीटिंग का रास्ता अपनाएं।
1: चीटिंग का रास्ता बहुत लंबा नहीं जाता है बेटा, चीटिंग का रास्ता बहुत शॉर्ट होता है। आज आप एक साल निकाल लेंगे लेकिन गलत रास्ता पीछे कर देगा। अपनी मेमोरी बढ़ाने का, चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो कुछ भी याद करते हैं आप तुरंत उसको लिखिए। बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मुझे लिखना कम से कम पड़े, तो बार बार पढ़िए और लिखिए, इससे चीजें आपको याद होंगी। और बादाम तो खाना ही खाना है।
4: हाँ, हाँ, दीदी।
1: और किसी की क्या तैयारी है?
2: दीदी एक चीज बोलूं?
1: बोलो।
2: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो किस चीज की कोशिश करनी है?
2: अपना लक्ष्य पाने के लिए।
1: लक्ष्य क्या है तुम्हारा?
2: मेरा बड़े ओके लक्ष्य है कि मैं पुलिस बनूं।
1: वाह, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और पुलिस बनने के लिए भाई स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा। खाती हो?
2: हाँ दीदी।
1: तुम्हें तो मोमोज पसंद है।
2: नहीं दीदी, साग भी खाती हूँ।
1: साग भी खाती हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। और कौन कविता लाया है?
3: दीदी मैं बताऊँ?
1: हाँ चलो स्टार्ट करो।
3: एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंगों में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई छाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया अगेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूलने लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भोरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण।
1: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस कविता के लिए। आप सब ने ये कविता ध्यान से सुनी है?
4: हाँ,
1: तो
4: दीदी।
1: कौन बताएगा मुझे इससे क्या सीख मिलती है?
3: दीदी मैं बताऊं?
1: भाई तुम ही तो सुनाई हो, का मतलब कि किसी ने ध्यान से नहीं सुनी है।
4: मैंने सुना है, मैं सुनाऊं?
1: हाँ सुनाओ।
4: इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार सूर्य की केवल एक किरण संपूर्ण दुनिया को ज्योतिर्मय, प्रसन्न और सुखी कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने कार्यों से संपूर्ण धरा को प्रकाशित करना चाहिए।
1: बिल्कुल, हमें हमेशा अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करते हो तुम लोग?
4: हाँ दीदी।
1: बताओ कि क्या क्या अच्छा अच्छा काम करती?
4: दीदी मैं मन लगा के पढ़ाई करती हूँ।
3: और मैं तो बूढ़े जो अनस्टेबल लोग उनकी मैं मदद करती हूँ।
1: और
3: अगर कोई

0: जानो चोटिल होता है, मैं उन्हें दवा देती हूँ।
1: मैं अपनी मम्मी को घर के कामों में हेल्प करती हूँ। दीदी मैं पक्षियों को खाना देती हूँ और

0: बहुत बढ़िया। तो चलिए बातों का सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में। और आप सब कोई पहेली या चुटकुला लेकर के आए हैं?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए पहेली पूछिए।
2: मैं एक पहेली पूछती हूँ। वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना पैरों के भागता है?
0: सोचो सब लोग।
3: इसका उत्तर बादल है।
0: सही जवाब है।
2: हाँ दीदी।
0: जोरदार तालियां। वाह
4: दीदी, मैं भी एक पहेली लाई हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती?
5: इसका जवाब मुझे लगता है ये उम्र होगा।
4: बिल्कुल सही जवाब।
0: वाह बहुत सही। जोरदार तालियां। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं आप सबसे।
6: हाँ दीदी।
0: एक किलो सेब है और एक किलो लोहे का एक टुकड़ा है, दोनों में से कौन ज्यादा भारी?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: बताओ।
4: दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों एक किलो हैं।
0: बिल्कुल सही। जोरदार तालियां। भाई आज सब तो तुरंत तुरंत जवाब दे रहे हैं। हाँ ये तो बहुत आसान था, लेकिन जवाब तो आया नहीं तुरंत, जवाब तो इसने मुझे दिया। आप सब अपने दिमाग पर जोर देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम पूछने वाले हैं आपसे जीके के कुछ सवाल। आप सब रेडी हैं?
6: हाँ दीदी।
0: उत्कृष्ट की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि दीदी पता नहीं क्या जीके का सवाल पूछ लेंगी। आप सब रेडी हैं?
6: हाँ दीदी।
0: तो सबसे पहला सवाल है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? कृष्ण बताएगा।
5: अमृतसर।
0: हाँ हाँ।
4: इसका उत्तर जैसलमेर है।
0: बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: बताओ।
4: पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
0: बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। अच्छा आप सबको गेम्स पसंद है?
6: हाँ दीदी
4: बहुत पसंद है।
0: कौन कौन सा गेम खेलते हैं आप लोग?
4: क्रिकेट, फुटबॉल,
0: बैडमिंटन। तो क्रिकेट से हम सवाल पूछते हैं, ठीक है? क्रिकेट में जब एक ओवर फेंका जाता है तो उसमें कितनी गेंद होती है?
6: कितनी?
0: ओ वेरी गुड, क्या बात है ता? इसे क्रिकेट बहुत पसंद है ना? और एक सवाल और गेम से ही रिलेटेड है कि चेक और मैट किस गेम में ये शब्द
6: होते हैं?
0: जोरदार तालियां। चेस भी खेलते हो? वो तो मुझे पता है कि तुम गाना भी गा लेते हो, तुम मैथ्स में भी परफेक्ट हो और तुम चेस भी खेलते हो, यानी तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत तेज है ना?
6: हाँ दीदी।
0: अब हिस्ट्री से कुछ सवाल, आप सब रेडी हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था?
2: सुभाष चंद्र बोस ने।
0: बहुत सही। जोरदार तालियां। अच्छा ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सबने सुना है?
6: हाँ दीदी।
0: वो किस राज्य की रानी थी?
6: झांसी।
0: बड़ी ही फेमस सी कविता है, याद है आप सबको?
7: बुंदेले हर बोलो के मुंह
6: हमने सुनी कहानी थी,
7: खूब लड़ी लड़ी
6: रानी झांसी वाली रानी थी।
0: बहुत बढ़िया। तो आज का कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते चलते बच्चों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती, ये हमारी सोच को, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाती हैं, क्योंकि हर किताब कुछ नया सिखाती है, उसमें नई बातें होती हैं, नए शब्द होते हैं और नई नई जानकारी होती है। तो आप सब आज ये प्रॉमिस कीजिए कि आप सब मोबाइल से दूर रहेंगे और अपनी कोर्स की किताबों के अलावा जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों, ज्ञान वाली बातें हों, उस किताब को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि किताबें ही हैं जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में ढेर सारी बातें, ढेर सारी सीख के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये था हमारा आज का बाल मंच कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र और हमारे साथ थे रैंपस स्कूल के बहुत ही प्यारे प्यारे और होनहार से बच्चे।

अभी आप सुन रहे थे बाल मंच, जिसे लेकर आई थी मेनका श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने।

ये गीत था फिल्म दूरियां से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने।

किशोर की कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी शरीफ बदमाश, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।

0: ये गुलशन हमारा फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। एस डी बर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

0: महल फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था आशा भोसले और देवानंद ने। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: ये समल सुर पकड़ के

0: ये गीत आपने सुना फिल्म छुपा रुस्तम से, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। संगीत था एसडी बर्मन का और गीत के बोल लिखे थे नीरज ने। इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंकज उदास।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना पंकज उदास की आवाज़। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदामात में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक़द किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियसना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजू के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोज़ा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजू का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और आर्ट समेत 4 मौजू का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 1 बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और

पलट गया, जिसमें तीन अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में दो दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत।

प्रेम की अंतिम सीमा होगी माँ तेरी परछाई, है माँ स्वर्ग वही घर जिसने तेरी आहट पाई। तू जब तक आंगन में रहती मुझ पे बचपन बहता है, तेरे हाथों के घेरे में माँ मेरा सब कुछ रहता है। तेरे हाथों के घेरे में माँ मेरा सब कुछ रहता है, तेरा ही सब कुछ दिया हुआ मेरे रग रग में बहता है। तेरे हाथों के घेरे में माँ मेरा सब कुछ रहता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही आपकी रेडियो सखी अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, माँ एक शब्द नहीं है बल्कि इसमें पूरी दुनिया समाहित है। बहनों, कहते हैं ना, माँ को सब पता होता है। हमारे दिल का और दिमाग का नक्शा इनकी जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए तो हमारी खबर इन्हें हमसे ज़्यादा होती है। हाँ, कभी खिटपिट होती है, कभी डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर जब गुस्सा हो जाओ तो सामने आकर लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। इसीलिए तो बहनों कहते हैं ना, माँ को सब पता होता है। माँ हमारी सच्चे दोस्त को एक नज़र में पहचान लेती है। इस मतलबी दुनिया में बहुत से अच्छे से वो उनको जान लेती है, इसीलिए तो हद से ज़्यादा हमारा ख्याल रखती है। और बुखार हमें होता है तो चिंता इन्हें होती है, और जब ठंड इन्हें ज़्यादा लगती है तो स्वेटर हमें पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें इन्हें बिना बताए सब याद रहती हैं। हम चाहे हंसी का नकाब या गम का नकाब लगाएं, गम का नकाब लगाकर हम हज़ार बार माँ को समझाएं कि माँ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? इन्हीं सब अनकही बात पे का अंदाज़ा तो माँ को ही होता है, और माँ को सब पता होता है। माँ की प्यार की हदें नहीं होती। अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। जान बसती है इनकी अपने बच्चों में और हमारी इनमें। इसलिए तो जब हमें वो सुबह उठाती हैं तो सूरज आता होगा ऐसा हम कहते हैं, लेकिन जब माँ की सूरत देखते हैं तो हमें अपना सूरत दिख जाता है। जब आसपास अंधेरा दिखाई दे तो आंखें बंद करके उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ, तुरंत उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ। पर कमाल की बात यह है ना, माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, फ़ोन पर एक आवाज़ से ही वो हमारा हाल जान लेती है, पर अपना गम लफ्ज़ों में नहीं बयां करती है। और हमें पढ़नी होती हैं उनकी आंखें, उनकी खुद चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल वो जोड़ना नहीं भूलती। जैसे माँ का जैसा माँ प्यार करती है ना कोई वैसा करता है ना कोई करेगा, वरना बताइए आप ही, क्या फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है? माँ को सब पता होता है। माँ की बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।

बहनों, माँ बनना हर स्त्री के जीवन का एक सुखद पल होता है, पर साथ ही आती है बहुत सारी जिम्मेदारी। मातृत्व के बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। गर्भावस्था से लेकर प्रसव के बाद की अवधि माँ के भावनात्मक और सामाजिक मानसिक कल्याण को भी संदर्भित करती है, यानी उसके बारे में बताता है। यह समय हार्मोनल, शारीरिक और जीवन शैली में बड़े बदलाव को लाता है, जिससे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साथ ही तनाव जैसे मानसिक विकार भी आते हैं। सही समय पे मदद और सामाजिक सहयोग माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद आमतौर पर एक दो साल तक ही यह समस्या शामिल हो जाती है। इस समय नींद की कमी, आत्मविश्वास की कमी और शिशु का तथा साथ ही भावात्मक अलगाव महसूस करना सामान्य संकेत होता है। गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद हो सकता है कि आपको विशेषज्ञ की मदद या काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सके। माँ का खराब मानसिक स्वास्थ्य न केवल उसके अपने जीवन में, कामकाज में, रिश्तों को भी प्रभावित करता है, बल्कि बच्चे के विकास पर भी असर डालता है। जाहिर सी बात है, अगर माँ का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो बच्चे पे यानी उसके स्वास्थ्य पे इसका पूरा असर होगा। एक स्त्री जब नई माँ बनती है या पहली बार माँ बनती है तो उससे हर स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है और उसे हर स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। उसके इस समय में अगर घर के बड़े बुजुर्ग स्त्री भी उनका साथ दे और साथ ही पार्टनर पूरा सहयोग दे तो इस समय को वो बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगी। इस समय माँ को समझाना होगा कि

आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर या मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें और मातृत्व का एक सुखद अनुभव भी कर सकती हैं। लेकिन चुनौतियों से भरा भरा होता है ये समय, इसलिए मातृ मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहनों, घर में एक बच्चे के आने से घर में खुशियाँ खुशी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। हर कोई उस बच्चे से अपना रिश्ता जोड़ने लगता है। माँ और पिता के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। वे अपना बचपन एक बार फिर उसमें जीने लगते हैं और इसके साथ ही उनके जीवन की बगिया एक बार फिर महक उठती है।

बहनों, सही बात है। जीवन की बगिया तो महक ही उठती है जब कोई बच्चा हमारे गोदी में आता है। लेकिन इसके साथ ही कामकाजी महिला जो दोहरी जिम्मेदारी के साथ होती है, उनका सफ़र थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कामकाजी माँ का सफ़र और मातृत्व और करियर के बीच एक खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण संतुलन होता है। यह कहानी प्यार, लगाव और दृढ़ संकल्प से भरी होती है, जहाँ माँ न केवल अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, बल्कि दफ्तर में भी अपनी काबिलियत साबित करती है। कामकाजी माँ का सफ़र आसान नहीं होता है। दोहरी जिम्मेदारी, कामकाजी माँ सुबह से रात तक और घर के बीच दौड़ती रहती है। इन्हें ऑफिस की डेडलाइन के साथ बच्चों की भी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। भावनात्मक चुनौतियाँ, अक्सर कामकाजी महिलाओं को ये गिल्ट महसूस होता है कि वे अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रही हैं। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ डबल हैं। समाज की उम्मीदें, काम का दबाव उन्हें मानसिक रूप से भी थका देता है। इसके बावजूद इनकी चुनौतियों के साथ एक कामकाजी माँ अपने बच्चों के लिए डबल रोल अदा करती है। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाती है। इस सफर में को आसान बनाने के लिए चाहिए कि परिवार और पार्टनर उनका पूरा सहयोग करें। घर के कामों में हाथ बटाना, उनकी भावनाओं को समझना और इस सफर को सुखद बनाना ये बहुत ही आसान कर देगा। या यूं कहें कि अपने परिवार और पार्टनर का पूरा सहयोग इन्हें मजबूत बना देता है। इस सफर को आसान बनाने के अगर हम खुद कुछ बातों का ध्यान दें, जैसे कि सब काम हिसाब से करें और कुछ कामों को प्राथमिकता देना सीखें, परिवार, दोस्तों या डे केयर की भी मदद ले सकते हैं। साथ ही अपने लिए समय निकालें, मानसिक शांति के साथ ही बहुत ज़रूरी है। काम के घंटों में लचीलापन लाएं और काम को एक टाइम टेबल में बना लें। बहनों, कामकाजी माँ का सफ़र आसान तो नहीं है, ये बात हम सभी बखूबी जानते हैं। यह सफ़र अत्यधिक संतोषजनक भी होता है और यह एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें हर पल एक बेहतर इंसान और एक सशक्त महिला बनाती है। तो बहनों, जो बहनें कामकाजी हैं, उन्हें दोहरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है। और हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तब हम सभी अभिभावक, चाहे माँ हो या पिता, हमको चाहिए कि हम उनसे संवाद करें, यानी उनसे बातचीत ज़रूर करें। अक्सर जब हमारे बच्चे टीन एज में होते हैं तब हम उनसे बातें करना शुरू करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों से, जब वो 6 या 7 साल की उम्र में हो, हमें उनसे ही बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि टीन एज में आते आते वे हमें अपनी सारी बात को समझा सकें। अक्सर हम अपने बच्चों को छोटा समझते हैं और उनसे खुलकर बात नहीं करते हैं, जिससे कि वे बच्चे अपनी बातें मम्मी पापा से न कह के नहीं कहते हैं और इससे समझते भी नहीं हैं। इसलिए चाहिए कि बच्चे जब छोटे हो, यानी कि 5-6 साल की उम्र में ही हो, तो भी हम इनसे बातें करें। और बच्चों से बात करने का तरीका है कि हम उनसे, यानी उनके बराबर में आए, दोस्तों जैसा व्यवहार करें, झुककर उनसे आंखें मिलाकर बातें करें, सक्रिय होकर उनकी बातें सुने और प्यार भरी भाषा में उनसे बातें करें, उनके दिन भर की गतिविधियों पे ध्यान दें, और सबसे ज़रूरी कि वो जब स्कूल से आए तो उनसे पूछे, और उनसे ये ना पूछे कि स्कूल में क्या उनके साथ बुरा हुआ, बल्कि उनसे ये पूछे कि उन्हें किस बात पे आज बहुत मज़ा आया और उन्हें स्कूल में आज क्या क्या किया। उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें आदेश देने के बजाय उन्हें ऑप्शन दें, जैसे कि बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, जिससे कि बच्चा आपको अपनी सारी बातें बता सके। एक बार आप उनकी जगह खुद को रख ले और इस उम्र में आपको कैसा लगता था और आपने कैसे दिक्कत परेशानियां सही, इन सब को भी ध्यान कर ले। लेकिन जब हम अभिभावक होते हैं तो हमें अपने बच्चे बच्चे ही लगते हैं, इसलिए हम उनको थोड़ा सा सख्ती से उनके साथ पेश आते हैं। इसलिए हमें अपने बचपन को याद करना चाहिए और एक बार उन बातों को भी समझना चाहिए, तो देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम उनसे जब संवाद करेंगे, जब वे कुछ बातें हमसे बोलेंगे, अपना हर बात हमें बताएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगी, हम बच्चों को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, उनकी भावनाओं, उनकी खुशी को समझें।

उनकी डर और नाराज़गी को भी समझें। उनके सामने झुककर या उनके साथ बैठकर आंखें मिलाकर उनसे बात करें, एक स्तर पर ही उनके पास आए, उनसे बात करें जिससे कि वो खुलकर आपसे अपनी बातें कर सके। हाँ, कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब हाँ व ना में ना देकर वो अच्छे से उसको अपने डिटेल तरीके से समझा सके, जिससे आप ज़्यादा बात कर सके। जैसा कि वो दिन भर आज उन्होंने क्या किया, किस बात पे हंसी आई, अगर बच्चा परेशान हो तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि वो किसी बात से दुखी है, तो इसका भी कारण जानने की कोशिश करें। और साथ ही अगर आप सब परिवार में एक साथ रहे, खाना खाते समय या कहीं जाते समय भी आप बच्चे से हर समय बातें करते रहें, बच्चों को अपना पूरा समय दें, हर दिन थोड़ी देर उनके साथ मस्ती और खेल के लिए भी समय दें, उन्हें अपनी बातें पूरी करने दें, बीच में भी रोका टोका ना करें और उनके विचारों का भी सम्मान करें। बच्चों के साथ बात करते समय धैर्य बनाए रखें और उनके साथ मज़ेदार और भरोसेमंद रिश्ता भी बनाने का ध्यान रखें। बहनों, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव ही बात सिखानी चाहिए, उनसे पॉजिटिव तरीके से ही बात करनी चाहिए। नेगेटिव बातें अगर हम बच्चों को कहते हैं या सिखाते हैं तो हो सकता है कि वो उन बातों से कुछ अच्छा सीख जाए, पॉजिटिव काम करें, लेकिन कभी ना कभी उनके दिमाग में रहता ही है कि हमें ऐसा कहा गया जो कि सही नहीं था। तो ज़्यादातर ध्यान रखें कि हम बच्चों से नेगेटिव बातें ना करें और मारने धमकाने जैसा काम तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका असर उनके जहन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। इन सब बातों का पूरा ध्यान रखें और ऐसी बात बच्चे से कभी ना बोलें जो बच्चों को डराए। बच्चों से हर बात प्यार से करें और प्यार से सुने और समझे और बिना डर के अपनी हर बात उन्हें कहने दें। बहनों, कहते हैं ना, माँ की जिम्मेदारी बहुत होती है अपने बच्चों के लिए, और माँ ये जिम्मेदारी बखूबी निभाती भी है। तभी तो माँ से बच्चे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जो बात बच्चे अपने पापा से नहीं कर पाते वो माँ से बड़ी आसानी से कह देते हैं और माँ भी बड़ी आसानी से उनकी बातों को समझकर उनका समाधान निकाल लेती है। तो बहनों, आइए अब सुनते प्रोग्राम में एक और प्यारा सा गीत।

0: बहनों, माँ का कोई एक दिन नहीं होता है, माँ से सारे दिन होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपको फिर मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे बातचीत। विषय है मैंगो मिलेबग की पहचान और बचाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजित कुमार श्रीवास्तव। से बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।

0: किसान भाई, दुनिया में जितना जीवधारी हुआ उसमें सबसे ज्यादा संख्या कीट पतंगा कहा। तरह तरह का कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, उनका जीवन चक्र समय के अनुसार, मौसम के अनुसार और अलग अलग अवस्था में कैसे पहचानल जा, कौन अवस्था नुकसान करेले, का पहचान ह, कब एकर प्रकोप होई, जब तक यह कुल बातन के आप लोग साझा ना करब, जानम ना, पहचानम ना, तब तक अपने फसल सुरक्षा का कार्य अधूरा रह जाए। आज हमने का ऐसने एक कीड़ा के बारे में बात कही जाई, जौना का नाम है मिलीबग। वैसे एके ज्यादातर लोग मैंगो मिलीबग के नाम से जाने ना, लेकिन हम खुद देखली कि ई कीड़ा है तौन साग सब्जी में भी और पेड़ पौधन में भी, खास तौर से जब आदमी गमला या जमीन पर चाहे वो गुलाब लगावे, गुड़हल लगावे, गेंदा का पौधा लगावे और तो और बैगन, टमाटर, मिर्चा, कोनो ऐसन फसल नहीं बा जवना के नुकसान न पहुंचावे। पहले तो हमन का ये जाने लिंजा कि ये कीड़ा हुए ना का है, समझे में ना आवेला, लेकिन समुचित जानकारी देवे आज अपने कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव जी। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यान महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज जनपद गोरख। डॉक्टर साहब, हमनी का कुछ अंदाज होला, कुछ देखला का तरीका होला, तो हम आपे से जानल चाहब कि ये मिली बग सही में कौन कीड़ा है आ एक कैसे देखल जा, कैसे पहचानल जा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, सर्वप्रथम इस आम का जो मौसम चल रहा है तो इसी के नाम से ही कीड़े की पहचान है, जिसे जैसे अभी बताया कि मैंगो मिलीबग। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे आम का दहिया कीट कहते हैं। ये दहिया एकदम कीट जो है वो एकदम उजले रंग का, जिसे आप कहते हैं उजरका कलर का होला, उजरका होने के साथ साथ एकदम सफेद दिखता है और जहाँ पर ये रहता है ये उस पौधे के पत्ती का रस चूसता है। कहने को तो ये आम का दहिया कीट है, लेकिन ये अनार में, कटहल में, पीपल पे, अमरूद में, नींबू प्रजाति के जो फल हैं उस पर, लीची पर, सहतूत पर, यहाँ तक कि आपका जो फूल है गुड़हल, इस पे भी, अमरूद पे और सब्जियों वाले पौधों पर भी इसकी उपस्थिति पाई जा रही है। इसकी उपस्थिति से ये करता क्या है कि ये बड़े जो वृक्ष हैं या छोटे पौधे हैं उनके पत्तों पे, उनके तनों पे, उनकी पत्तियों पे पूरी तरह से लिपट जाता है और कभी कभी आपको ये धोखा भी होता है और पहचानने में भी ये असावधानी होती है कि ये कीड़ा है या कोई रोग फफूंदी है जो पूरी तरह से चिपकी हुई है। लेकिन ये एक तरह का कीड़ा है जो कि रस चूसता है। इसकी मादा जो कीट है वो जमीन के अंदर जाके अंडे देती है। जमीन में अंडे देने के पश्चात ये आपका जो अक्टूबर नवंबर से इसके जो बच्चे हैं वो तैयार हो जाते हैं अंडे से निकल के और पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। पेड़ों पे चढ़ने के पश्चात ये टहनियों पे, कोमल जगहों पे इसके निम्फ और जो इसका प्रौढ़ कीट है दोनों ही हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसका प्रकोप जो है वो दिसंबर से शुरू हो जाता है और मई माह तक इसका रहता है। उजले रंग के होने के साथ साथ ये एक तरह का जब रस चूसते हैं तो उसके बाद एक श्राप भी निकालते हैं, जिस श्राप पे वो मधु के समान मीठा होता है, जिस पर चींटी लग जाती है और उस पर काली फफूंदी भी आ जाती है। फफूंदी आने के बाद ये चींटी भी नुकसान पहुंचाती है और जो फफूंद लग जाती है वो भी हमारे पौधों को और कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। रस चूस लेने के पश्चात हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसका जो यौवनपन है वो भी कम हो जाता है और हमारा पौधा अपरिपक्व अवस्था में उसके फल और पत्तियां गिरने लगते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एकर जीवन चक्र कैसे पूरा होला, जैसे आप बोलते हो।

0: बोली हाँ कि वयस्क बा या निम्फ बा, तो कैसे पहचानल जाला? का ई पंख वाला है या पंख विहीन है? कैसन कीड़ा है?
1: इस कीट की जो मादा है वो पूरी तरह से सफेद रंग की होती है और उसकी सतह पर उजलका पाउडर की जैसा, सफेद सफेद पाउडर जैसा आवरण से ढका रहता है। नर कीट भी उसी तरह का होता है, लेकिन उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं। मादा गोल होती है और जब संगमन की क्रिया हो जाती है तो मादा जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है और वहां पर ये जाकर अंडे देती है। पैर बहुत छोटे छोटे से होते हैं शरीर के आकार में, जो कि कम दिखाई देते हैं चलने में, और ये झुंड बनाकर रहते हैं। झुंड बना के रहने से ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि ये कीड़ा इस पे लगा है या कोई रोग से जो है वो सफेद हुआ है। जहां तक इसकी बात करें तो इसका अंडा जमीन के अंदर देने के पश्चात माँ, जो बच्चे छोटे शिशु निकलते हैं, वो अक्टूबर नवंबर पे निकल के पेड़ों पे चढ़ते हैं और इसके बाद ये तनों एवं पत्तियों तक पहुंच के उनका रस चूसते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक चीज और बताई कि कीड़ा के बारे में तो अब संदेह दूर हो गई। हमारे पंच भाई जान गए ना कि ई सफेदी वाला जो संरचना बा, कतनो पानी डालल जात बा धोवात नहीं बा, आ धीरे धीरे पौधा मुरझात बा, कमजोर होत बा, यहाँ तक कि डाली भी धीरे धीरे सूखे लगल। तो ई कीड़ा है जौना के मिली बग कहल जाला, जौना पेड़ पर लगेला वो हिसाब से एकर नाम अलग हो सकेला, पहचान अलग हो सकेला, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीका से समझी हैं, लेकिन ये मिली बग है कि कीट है। अब एकरे नियंत्रण को उपाय का करे के चाहिए?
1: जी किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम इस कीट की पहचान के पश्चात जहाँ पर आपका वृक्ष है उसके आसपास जितनी सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, कूड़ा करकट है, इन सबको इकट्ठा ना होने दें। अपने पेड़ के आसपास इकट्ठा जो है उसको अलग कहीं कर दें या जला दें या मिट्टी में कंपोस्ट बनाने के लिए रख दें। इसके साथ जुलाई से अक्टूबर के महीने में जो हमारे बड़े वृक्ष हैं उनके आसपास की जमीन जो है वो हमको गहराई तक खुरच देना चाहिए, तो कोड़ देना चाहिए, जिससे कि इनके जो अंडे हैं उनको जो है रहने के लिए स्थान ना मिले और वहां से हम इसका नुकसान शुरू कर दें और जानवरों से इस कीट से बचाव हमारा इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा एक जो सबसे प्रभावी तरीका है कि ये नवंबर के बाद दिसंबर माह में, नवंबर दिसंबर माह में इसके जो शिशु निकलते हैं तो ये वृक्षों पे चढ़ते हैं, तो इन वृक्षों पे चढ़ने ना चढ़ने पाए इसके लिए इस पे जो है चिपचिपी स्टिकी बैंड लगा देते हैं। जून के महीने में खेतों की जुताई करने से इस कीट के अंडों को, और नवंबर दिसंबर में हम जुताई करेंगे तो इसके नवजात को काफी हद तक हम पेड़ों पे चढ़ने से रोक सकते हैं। डहिया कीट का जो शरीर है वो मोम जैसा है, मोम मतलब वैक्स है। इस पे कोई भी जैसे अभी का पानी वगैरह कोई डालेंगे तो वो बड़े आराम से धुल के निकल जाता है और रसायन का इसका जो प्रभाव है वो कम होने पाता है। इसके रासायनिक अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो कार्बारिल है, मोनोक्रोटोफास है, इमिडाक्लोप्रिड है या थायामिथाक्साम नाम का जो रसायन है, इस रसायन की मात्रा को मिलाकर अगर हम इस पे छिड़काव करते हैं तो इस कीट से हम अपने वृक्ष को नुकसान से बचा सकते हैं। दवा के लिए जैसे कि आपका इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास नाम की दवा है तो इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से मिलाएंगे, तथा थायोमिथाक्साम नाम की जो रसायन है इस रसायन का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से इस कीट से हम बचाव अपने वृक्षों का, पौधों का कर सकते हैं।
2: खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुन रहे थे बातचीत। विषय था मैंगो मिलीबग की पहचान और बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अजित कुमार श्रीवास्तव और बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame speed chahiye, hame game nahi, solutions chahiye, hame राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,000

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.

0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और

0: विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

0: सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भन्नुभयो, लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नमा प्रत्येक मतदाताको भागीदारी हुन जरूरी छ। आज तिरुपतिमा संवाददाताहरूसित बातचीतमा उहाँले पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, पुदुचेरी अनि तामिलनाडुमा सफल अनि शान्तिपूर्ण चुनावमाथि सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुई दिनको तिरुपति भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले आज बिहान तिरुमलामा श्री वेंकटेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभयो। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोशल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR न्युज कर्सियङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: अब रहल समाचार। तमिलनाडुमा तमलिगा वैत्री कजगम टीवीके पार्टीका संस्थापक सी जोसेफ विजयले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकरले उहाँलाई पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। श्री विजयका साथ 9 मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिए। यसमा केजी अरूणराज, आदव अर्जुन, एन आनन्द, सेल्वी एस कीर्तना र डाक्टर टीके प्रभु सामेल छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धी र तमिल फिल्म उद्योगका कैयन हस्तीहरू उपस्थित थिए। श्री विजयको टीवीके पार्टी 234 सदस्यीय विधानसभामा 108 सीट जितेको छ र 120 विधायकहरूको समर्थन प्राप्त गर्यो। उहाँले 1968 पछि राज्यका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् जो कुनै पनि द्रविड पार्टीसित सम्बन्धित छैनन्। डीएमके र एआईडीएमके राज्यका दुई प्रमुख द्रविड दल हुन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्री जोसेफ विजयलाई तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएकोमा बधाई दिनुभएको छ। सोसियल मिडिया पोस्टमा उहाँले भन्नुभयो, केन्द्र सरकारले तमिलनाडु सरकारका साथ मिलेर मानिसहरूको जीवनस्तरलाई राम्रो बनाउनमा सहयोग गर्नेछ। ऐतिहासिक सोमनाथ मन्दिरको आध्यात्मिक पर्यटनको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा आफ्नो यात्राको 75 वर्ष पूरा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्वको अवसरमा उपस्थित रहनुहुनेछ। सोमनाथ ट्रस्टको अध्यक्षको रूपमा श्री मोदीको नेतृत्वमा सोमनाथ मन्दिर वर्तमान समयमा आफ्नो स्वर्ण युगमा छ। धार्मिक महत्व अतिरिक्त सोमनाथ मन्दिर पर्यावरणीय संरक्षणमा पनि अग्रणी स्तरमा उदित भइरहेको छ। यसको लक्ष्य देशको पहिलो शून्य उत्सर्जन मन्दिर रूपमा स्थापित हुनु हो।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठनले हन्ता भाइरस संक्रमणको आशंका भएको एमभी होन्डियस क्रूजमा सवार सबैजनालाई 42 दिनसम्म निगरानीमा राख्न भनेको छ। संगठनको वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डाक्टर वेन केरखोवले भन्नुभएको छ, वर्तमानमा कुनै पनि यात्री या चालक दलका सदस्यहरूमा लक्षण देखिएको छैन, तर उनीहरूलाई 42 दिन अवधि जहाजबाट उत्रने सबै व्यक्तिहरूको निगरानीको सिफारिश गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, आम जनता र क्यानरी द्वीप समूह को निवासी हरुमा जोखिम कम छ जहां एमवी होन्डियस क्रूज आज पुग्ने छ यसअघि एमवी होन्डियस क्रूज मा हन्ता वायरस को संक्रमण को सूचना प्राप्त भएको थियो जो अर्जेन्टिना बाट पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे गइरहेको थियो
5: श्री टेड्रोस ने पुष्टि की है कि वे हंता वायरस से प्रभावित क्रूज यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित वापसी के लिए स्पेन के अधिकारियों के साथ द्वीप की यात्रा करेंगे डच ध्वज वाला क्रूज जहाज एमवी होन्डियस के कल सुबह टेनेरिफ पहुंचने की उम्मीद है श्री टेड्रोस ने कहा कि जहाज पर सवार किसी भी व्यक्ति में फिलहाल वायरस के लक्षण नहीं दिखे हैं हालांकि यात्रियों को आइसोलेशन में रखा जाएगा इस वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि जहाज से पहले ही उतर चुके 5 यात्रियों में हंता वायरस की पुष्टि हुई है वहीं अमरीका और ब्रिटेन ने क्रूज जहाज से अपने नागरिकों को निकालने के लिए विमान भेजने पर सहमति व्यक्त की है हंता वायरस आमतौर पर दूषित कृतंक मल के संपर्क से फैलता है और मनुष्यों के बीच आसानी से नहीं फैलता हालांकि इसमें पाया गया कि एंडीज वायरस दुर्लभ मामलों में लोगों के बीच फैल सकता है इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण से 1 से 8 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह
1: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अनि विशेष दूत स्टीव विटकॉफले हिजो कतार का प्रधानमंत्री अनि विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी सित भेट गरेको छ दुई पक्ष बीच पश्चिम एशिया संघर्षलाई लिएर अमेरिका अनि ईरान बीच चलिरहेको बातचीतमाथि चर्चा भयो श्री अल थामी यानीले एक दिन अघि वाशिङटनमा उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सित भेट गर्नुभएको थियो पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा अमेरिका इरान बीच भएको वार्ताको पहिलो चरण असफल भएको थियो वार्ताको दोस्रो चरण हुन सकेन अर्कोतर्फ कतारले पनि अमेरिकी अधिकारीहरूसित मध्यस्थताका लागि काम गरिरहेको छ आईपीएल क्रिकेटमा आज दुई म्याच हुनेछ पहिलो म्याच चेन्नई सुपर किङ्स अनि लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच चेन्नईमा हुनेछ यो म्याच दिउँसो 3:30 बजेदेखि हुनेछ दोस्रो म्याच रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु अनि मुम्बई इन्डियन्स बीच रायपुरमा हुनेछ यो म्याच भरे बेलुकी 7:30 बजेदेखि खेलिनेछ हिजो भएको म्याचमा गुजरात टाइटन्सले राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गर्यो 4 विकेट लिएको राशिद खानलाई म्यान अफ द म्याच चुनियो गुजरात अनि राजस्थानमा भोलिसम्म लू चल्ने अनुमान छ पश्चिमी राजस्थानको केही भागमा आगामी 4-5 दिनसम्म रातको समय गर्मी बनिरहनेछ आगामी 7 दिनमा उत्तर पश्चिम भारतमा अधिकतम तापमानमा 3-5 डिग्री सेल्सियसको वृद्धिको पनि आशंका छ मौसम विभागले आगामी 2 दिनमा केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी अनि कराईकलमा मुसलधार वर्षाको सम्भावना व्यक्त गरेको छ आगामी 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत अण्डमान अनि निकोबार द्वीप समूह आन्ध्र प्रदेश बिहार झारखण्ड लक्षद्वीप उडिसा पश्चिम बंगाल तथा सिक्किमको हिमालय नजिकको भागहरूमा मेघ गर्जनको सम्भावना छ यो समाचार युट्युबमा @AIR कर्सियङ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकचोटि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेंगलुरुमा आर्ट अफ लिभिङको 45 जयन्ती समारोहमा भाग लिनुहुँदै सेवा आध्यात्मिकता अनि सामाजिक परिवर्तनमा आर्ट अफ लिभिङ फाउन्डेशनको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो गृहमन्त्री अमित शाहले आज नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय बैठकमा आशंकित बाढ़ अनि लूसित जुझ्न भइरहेको तयारीको समीक्षा गर्नुहुनेछ तमिलनाडुमा तमलीगा वैत्री कजकम टीवीके पार्टीका संस्थापक सी जोसेफ विजयले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो विश्व स्वास्थ्य संगठनले हन्ता वायरस संक्रमणको आशंका भएको एमवी होन्डियस क्रूजमा सवार सबैजनालाई 42 दिनसम्म निगरानीमा राख्न भनेको छ र मौसम विभागले गुजरात अनि राजस्थानमा भोलिसम्म लू चल्ने अनुमान व्यक्त गरेको छ यसका साथै अहिलेलाई आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो अघिल्लो समाचार लिएर 3:15 मिनटमा फेरि उपस्थित हुनेछौ सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले

रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइन भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोटेक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: So he's very good director, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, कभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने
1: अभी। अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्हें कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा,
0: असिस्टेंट
1: हनी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे। रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख ले।

0: चीजें। अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: बोला हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाने अब था, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार साहब,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया।
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी।
0: उन्हें यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी।
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: में शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया जो देव साहब का भांजा क्या नाम है
1: शेखर कपूर
0: सॉरी शेखर कपूर नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से और आके हमको सुनाए। बहुत अच्छे सीन थे बढ़िया लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जब मैं कंप्लीट देता हूँ तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त। तुम यार अपने दोस्त हो तुम समझ सकते हो ना तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है स्क्रीन पे तैयार है मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे
0: उनका स्टाइल है जो सुन इतनी देर सुन सकता हूँ इतने जो भी उन्होंने सुना इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे वो उसका सुना दिए आगे के सीन सुनाए उनके कुछ एक आध सजेशन जो आए इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया कोई ली कोई नहीं ली जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% देर नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश भल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो सब डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो हो हो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओ, क्या बात है।
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे, पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा,
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है।

0: भी अच्छा है, यस यस करूँगा। सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग न जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें। इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
4: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
3: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़ी गई। जाओ भाई।
8: आरबीआई कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
10: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
11: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
10: डायल कीजिए 8700014242।
11: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
12: अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। दोस्तों, संयम वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अर्थात दोस्तों, संयम मनुष्य को सुख दुख में, सफलता असफलता के समय में और कठिन परिस्थितियों में भी शांत, धैर्यवान और समझदारी से काम लेने में शक्ति देता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में सही निर्णय लेता है और संतुलित और सफल जीवन बना पाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं संयम के बारे में ही आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो संयम ही है। दोस्तों, जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, शांति, सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इन सबको पाने के लिए केवल प्रतिभा या धन की ही पर्याप्त नहीं होता है। जीवन को सही दिशा देने के लिए जिस गुण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वही है संयम। दोस्तों, संयम का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं, बल्कि अपने विचारों को, शब्दों को और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। संयम हमें सोचने की शक्ति देता है और गलत निर्णयों को रोकने में हमारे दिमाग पर जोर डालता है कि इससे हम बचें। दोस्तों, आज का समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति जल्दी सफलता पाना चाहता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, तनाव होता है और निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में संयम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को संतुलित जीवन बनाने में मदद कर सकती है। जब व्यक्ति संयम रखता है तब वह परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेता है। हम महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और अनेक महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में संयम को सबसे बड़ा गुण बनाया। उन्होंने सिखाया कि क्रोध में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जबकि धैर्य और शांति से उसका समाधान, किसी भी परिस्थिति का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान निकालना आसान होता है। जो संयमित व्यक्ति होता है वो दूसरों का सम्मान करता है और समाज में प्रेम तथा सद्भावना फैलाता है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में भी संयम का बहुत बड़ा महत्व है। यदि छात्र समय का सही सदुपयोग करते हुए अनुशासन में रहे और धैर्य के साथ, संयम के साथ मेहनत करता रहे तो वह सफलता निश्चित रूप से अपने कदमों में झुका ही लेता है। इसी प्रकार परिवार और समाज में भी संयम रिश्तों को मजबूत करता है। मीठी वाणी और शांत व्यवहार हर कठिनाइयों को सरल बना देती है। दोस्तों, संयम का अर्थ कमज़ोर होना नहीं होता है। इन सब बातों से तो यही लग रहा है कि हम कमज़ोर हो जाएं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। वास्तव में संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकता है। दोस्तों, नदी की शांत धारा भी बड़े बड़े पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। इसी प्रकार एक संयमित व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। तो आज का जो क्षण है वो हमें यही सिखाता है कि हमको संयम के साथ आगे बढ़ना है। जीवन एक यात्रा है और संयम उसका सबसे सुंदर मार्गदर्शक है। संयम हमें गिरने से बचाता है, सही दिशा दिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इसीलिए आइए आज अपने अंदर एक संकल्प लें कि हम हर परिस्थितियों को एक अपने अंदर संयम बना करके उसको देखेंगे, उसके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे गीत, आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विविधता का देश है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, कला, भाषा और प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। इन्हीं विशेषताओं से सजा हुआ पूर्वी भारत का एक अद्भुत राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, जिसे आज ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक संपदा और मानवता के मूल्यों के कारण विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उड़ीसा का सबसे जो बड़ी पहचान है वो है जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। यहाँ आयोजित होने वाली प्रसिद्ध रथ यात्रा मानव एकता और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु इस महापर्व में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त होते हैं। दोस्तों उड़ीसा अपनी प्राचीन कला और संस्कृति के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ की ओडिसी नृत्य जो शैली है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में एक विशेष स्थान रखती है। मंदिरों में भी स्थापत्य कला, विशेषकर कोणार्क सूर्य मंदिर, भारत की गौरवशाली वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर आज भी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी उड़ीसा अतुलनीय है। समुद्र तट, घने वन, झील और वन जीव इस राज्य को प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। दोस्तों चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक, ये भी उड़ीसा में ही है, जहाँ हजारों विदेशी पक्षी हर वर्ष आते हैं। यह दृश्य भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उड़ीसा ने खेल, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। हॉकी के क्षेत्र में इस राज्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज उड़ीसा भारतीय खेल संस्कृति का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उड़ीसा केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और विकास का अद्भुत संगम है। यह राज्य हमें सिखाता है कि अपनी परंपराओं को संयोज कर आधुनिकता की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। अतुलनीय भारत का यह गौरवशाली राज्य विश्व पटल पर निरंतर अपनी पहचान मजबूती से बना रहा है। और मेरा तो मानना यह है कि अगर इस बार आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो इसकी प्राकृतिक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने ज़रूर जाइएगा। आइए

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में, और बातचीत में हम लोग रुख लेंगे रोजगार समाचार की तरफ। दोस्तों रोजगार समाचार में मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 शुरू हो चुकी है, जिसमें कुल 11,127 पदों पर भर्तियां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हुआ है 15 मई 2026 से और आवेदन की अंतिम तिथि है 14 मई 2026 तक। इसी के साथ दोस्तों कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग

लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जल्द ही समाप्त होने वाली है, उम्मीदवार तुरंत आवेदन करना शुरू करें। साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट भर्ती 2026 भी शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 3003 पदों पर भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि मई 2026 के अंतिम सप्ताह तक संभावित है। साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 भी शुरू हो चुकी है, जिसमें 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी भर्ती के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संभावित जून जुलाई 2026 में शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि जुलाई के अंत तक संभावित है। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 भी आ चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अब भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की संभावित तिथि मई जून में शुरू होने वाली है और अंतिम तिथि जून के अंतिम माह तक संभावित है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती भी शुरू हो चुकी है। सेना में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि संबंधित जोन के अनुसार अलग अलग है। उम्मीदवार जो हैं वो अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करें। इसी बातों के साथ आइए चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। आपको तो पता है बातें बहुत होती हैं मेरे पास करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। समय हो चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है, एक भी रिवर नदी यानी रिवर नहीं है, तो ऐसा कौन सा देश है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं बता दूँ कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती है। दोस्तों आज का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। मैं अपना प्रश्न एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब से कुछ ही पलों में।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग न जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: चंदन का एहसास।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: पंचों जय हिंद।
4: भैया देखा ये नारा के साथ अपन बैठ के शुरू भइल। भैया देखा सरकार की ओर से कई प्रकार के योजना चल रहा।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: होला का भैया अगर वो योजना के बारे में अपने पंच भाई लोगों के जानकारी नहीं रहला तो ओकर पूरा फायदा नहीं उठा।
3: बिल्कुल सही कहला।
4: जैसे देखा भैया एक योजना वाटा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, योजना के अंतर्गत जो जिन्ना युवा लोग बने भाई ना मान ला भाई सब जिन्ना जब पढ़ा सबके नौकरी चाकरी तो मिली ना है।
3: सही कहा भाई।
4: तो अपन कुछ कुछ अपन रोजगार कही दे।
3: बिल्कुल
4: रोजगार शुरुआत करें
3: भाई। कुछ लोग कई भी चाह लें।
4: हाँ।
3: और इस सोचा लें कि भाई अगर कहीं से हमको कुछ लोन मिल जाता है, कुछ उधार मिल जाता, कहीं बैंक से कुछ पैसा मिल जाता तो हम अपन ये रोजगार के कोनो कार्यक्रम शुरू करें।
4: भैया देखा सही कहला तू। अपन जौने लड़का लोन बना ना जे भी युवा बाटे जे चाहत कोनो काम धंधा कर जाए, रोजगार अपन कर जाए। एक खातिर सरकार को से अनेक प्रकार की योजना बाटे, खास तौर पर रोजगार सृजन खातिर प्रधानमंत्री के जो योजना बा ओकर फायदा ई बाटे कि अपन देखा जाए अपन जैसे जो उत्पादन वाला कार बाटे ओसे लेके वितरण तक ले काम बाटे एमन सरकार से जैसे मान लो भैया पूंजी नहीं बाटे तो भैया सर बैंक से लोन मिल जाए।
3: हाँ।
4: और ओमन मैंने एक मुख्य उद्देश्य है लोन मिल जाए और ओमन अच्छा खासा सब्सिडी मिला ला।
3: हाँ।
4: और सब्सिडी समझ जा कि अपन जैसे मान लो उत्पादन करे बात 50 लाख तक ले लोन मिल सकला।
3: अच्छा।
4: आ वितरण करे बात कौन चीज के ओकर माने 20 लाख तक ले ओकर लोन मिल सकला।
3: हां हां इस सीमा बाय
4: का सीमा बाटे। और मैंने समझा भैया 15% से लेके 35% तक ले अपन उमा सब्सिडी पर।
3: बिल्कुल भैया तो कहे के मैं यह बा कि यह योजना के अगर लाभ ले बा अपने पंच भाई लोगन के तो खास तौर से जे भी युवा भाई लोग बा वो लोग कम से कम कुछ सामान्य जानकारी ओ काम से संबंधित जरूर ले लें, ओकरे बाद लोन खातिर आवेदन अपन प्रस्तुत करें और अगर उनके लोन मिल जाते हैं तो अपन काम आगे बढ़ा सके लें।
4: सही कहला भैया। जैसे एमन ये बात है कि मान लो जैसे अपन की कोनो कोनो भी तरह के अपन बात है कि सिलाई सेंटर मान लो महिला लोग का स्वयं सहायता
3: बहुत तरह का काम बा
4: खुले कैसे डेयरी उद्योग कैसे गला मोबाइल रिपेयरिंग का किराना दुकान कैसे फर्नीचर काम कैसे गला माने गांव से लगल जुड़ल बात है व्यवसाय कैसे अपन घर हूँ रह जाइए और अच्छा खासा उनके आमदनी के जरिया भी बना
3: लिया।
4: जे भी अपन युवा बाटे अपन अगर रोजगार के लिए सोचा था तो वो योजना का फायदा उठावे और अधिक से अधिक लाभ उठावे। ये देखे चर्चा अब लग रहा सुनल जाए एक ठो झलकी लड़की पसंद है अपन पंच भाई के सुने और अपन मनोरंजन करें।

0: आइए आइए खन्ना साहब।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए मिसेस खन्ना, तशरीफ रखिए।
2: अरे भाई, जब आए हैं तो तशरीफ भी रखेंगे, क्यों जीवन की माँ।
3: और क्या, लड़की देखने आए हैं, कोई मजाक थोड़ी है।
1: अरे बेटा जीवन, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना।
4: That's all right. Thank you very much.
1: आप लोगों को घर खोजने में कोई परेशानी तो नहीं हुई?
5: अजी कतई नहीं।
3: आपको तो लगता है गली का बच्चा बच्चा जानता है।
5: आखिर को सेठ है भाई, सेठ।
1: आप तो शर्मिंदा करते हैं खन्ना साहब, हम तो बस नाम के ही सेठ हैं।
3: क्या बात करते हैं आप, ये कलात्मक कमरा, ये कीमती सामान, भला आपको कोई कैसे नहीं जानेगा।
5: सेठ जी, आपको कुछ शेर व शायरी का भी शौक है?
1: जी बचपन में था, लेकिन अब
3: संगीत से प्रेम हो गया होगा।
1: जी नहीं जी नहीं, वो दरअसल
4: अजी क्या शायरी क्या संगीत, रॉक एंड रोल शेक जस्ट एंजॉय कीजिए, हर फिल्म में फास्ट म्यूजिक के साथ चलता है।
1: लगता है आप सभी को किसी न किसी कला से प्रेम है।
5: जी हाँ, कहा है ना, कला बिना सब जीवन सूना।
1: अहो भाग्य की आपके यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है।
5: जी हाँ जी हाँ,
1: आज उसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती।
3: समधिन जी के ना होने का दुख हमें भी है।
1: शिवन बेटा, तुम्हारी वकालत की पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: अजी पढ़ क्या रहा है, खाना पूरी कर रहा है। जीवन तो बड़े बड़े वकीलों के कान वैसे ही काट देता है, क्यों जीवन के बाबू।
2: तुम ठीक कहती हो जीवन की माँ,
5: अगर जीवन हम लोगों की वकालत न करता तो हम लोगों का अब तक तलाक हो गया होता।
4: यू आर राइट डैडी, लेकिन सारी गलती,
3: देखा ना, मैं पहले ही कहती थी कि तुम ही हमेशा गलती करते हो।
5: ठीक कहती हो जीवन की माँ, तुमसे शादी करके मैंने जो गलती की उसे आज तक भुगत रहा।
3: रहने दो जीवन के बाबू, मैं चुपचाप तुम्हारी सब ऐसी वैसी बातें सह लेती हूँ, कोई और होती तो पता चलता।
4: वंडरफुल वंडरफुल, मेरी फिल्म के लिए अच्छा कॉमेडी सीक्वेंस रहेगा।
1: तुम्हारी फिल्म?
4: जी हाँ, मैं अभी इसी महीने बम्बई गया था, सब मामला पक गया है, बस इनिशियल मनी यानी पूंजी हाथ में आते ही फिल्म का मुहूर्त कर दूंगा।
1: बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे।
3: अरे हाँ, इतने बड़े मकान में बस आप और सिर्फ आपकी बेटी कला।
1: हाँ मिसेस खन्ना, कला की माँ ने बड़े शौक से ये मकान बनवाया था, लेकिन अरे मैं बातों में आप लोगों के लिए नाश्ता तो भूल ही गया।
6: अरे कला बेटी, जरा नाश्ता तो ले आओ।
1: ये मेरी बेटी कला है।
3: नमस्ते, खुश रहो बेटी, बैठो, खड़ी क्यों हो?
1: बैठ जाओ बेटी, ये जीवन की माँ है।
2: और मैं उसका बाप।
4: और मैं जीवन, आई मीन योर लाइफ।
3: जी
4: कुछ कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपका नाम बड़ा सुंदर है, ब्यूटीफुल।
1: मेरी बेटी भी कम सुंदर नहीं है।
3: अरे हाँ बेटी, तुम्हारा रिजल्ट तो आ गया होगा। जी मैं फर्स्ट डिवीजन।
2: तुमने जरूर ज्योग्राफी में एमए किया होगा।
3: जी नहीं, हिस्ट्री में। अच्छा, इतिहास तो मेरा प्रिय विषय रहा है।
2: भैया है, ये भी कोई पढ़ने वाली चीज है?
3: अरे हटो, तुमने कभी जाना समझा भी है इतिहास को? जाओ शहर का भूगोल समझो पहले।
1: अरे आप लोग तो कुछ खा नहीं रहे हैं, ये नाश्ता तो वैसे ही रखा है।
3: आप चिंता ना करें,
2: हम लोग सब निपटा देंगे।
3: हाँ बेटी, तुम्हें और क्या क्या आता है?
7: जी
4: बताइए ना, आपकी हॉबी क्या है?
7: जी
3: अरे जी, शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं, बोलती जाओ। भाई साहब, अगर आप
1: समझा समझा, आप लोग बात करिए, तब तक मैं अंदर रसोइये को देखता हूँ। कला बेटी शर्माना नहीं, ये लोग जो पूछे उसका जवाब दे देना।
3: अरे भाई, बाप के सामने तो बेटी शर्माएगी।
2: रहने भी दो जीवन की माँ, जब हम लोग तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए थे तब तुम तो बिल्कुल नहीं शर्माई थी।
3: तुम ही कौन 2-4 किलो शर्म अपने साथ लाए थे जीवन के बाबू।
4: ओ डैडी मम्मी, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कला जी, आप तो नहीं शर्माती?
7: जी कतई नहीं।
4: देखा मम्मी।
3: हाँ हाँ, अच्छा बेटी, ये सामने दीवार पर जो पेंटिंग टंगी है वो किसने बनाई है?
7: जी मैंने।
3: अच्छा, और वो तानपुरा कौन बजाता है?
7: मैं।
3: अरे तुम तो बिल्कुल मेरी ही तरह हो। मुझे भी चित्रकारी और संगीत से बड़ा प्रेम है।
2: गलत।
3: क्या गलत?
2: यही कि तुम्हें किसी किस्म की लीपा पोती और गाने बजाने की तमीज नहीं है।
3: बेकार की

0: बातें करते हो जी।
1: मैं सही कह रहा हूँ, तुम ही बताओ बताओ कि तुम इतने दिनों से कलम ब्रश लेकर कागज खराब कर रही हो ना।
0: हाँ हाँ तो
1: आज तक तुम अपनी शक्ल भी नहीं बना पाई।
0: और क्या जरा बोलो।
1: पिछले 10 वर्षों से तुम रियाज कर रही हो, सारे गामा सारे गामा सारे गामा पर, बोलो कर रही हो ना।
0: हाँ हाँ तो
1: लेकिन आज तक 10वां राग ईजाद नहीं कर पाई।
0: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
1: यानी कि मैं बंदर हूँ।
2: डार्विन की थ्योरी है कि हम सभी बंदर के बच्चे हैं। आपका क्या ख्याल है कला जी?
3: आप सही कहते हैं जीवन जी, इसीलिए तो आदमी भी बंदर की तरह इधर उधर उछलकर नाचता रहता है।
2: बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको डांस भी आता है।
3: जी हाँ, हर तरह का।
0: मैंने भी कथक सीखा है।
2: नो मम्मी, मेरी फिल्म में कथक नहीं, जिप्सी डांस चलेगा। कैसा रहेगा कला जी?
3: फर्स्ट क्लास। लेकिन आपकी फिल्म?
2: जी हाँ, सब तैयारी है, बस फ्लोर पर जाने की देरी है। मैं हीरो और आप हीरोइन, आप हीरोइन और मैं हीरो। हम लोग जब सड़क पे निकलेंगे, देखने वालों की निगाहों में बस जीवन कला कला और जीवन होंगे। आपको बेल बॉटम तो पसंद है ना? और हाँ, आपको मेरे फिल्म की कहानी मालूम है?
3: जरा बताइए तो।
2: टीनेज लव स्टोरी, फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिलिंग, एक्शन पैक्ड सेंसेशनल ड्रामा। जरा अटेंटिव होकर सुनिए। रात का समय है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हीरोइन जंगल के बीच घोड़े से सरपट सरपट सरपट भागी जा रही है। तभी बिजली कड़कती है, एक भयानक चीख के साथ हीरोइन घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है, उसमें से हीरो निकलकर उस हसीना को देखता ही है कि विलेन अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो हीरोइन को जबरन उठा लेता है, लेकिन वही हीरो सॉरी डैडी। और इसी बीच विलेन के चंगुल से निकलकर हीरोइन दौड़कर हीरो से चिपट जाती है और हीरो उसे अपनी बाहों में।
3: अरे अरे छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो शर्म कीजिए।
2: सॉरी मैडम, मैं समझा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। बस बस वहीं से डुएट शुरू हो जाता है। बरसात में हम तुम एक जंगल से जा रहे हो और तुम गिर जाओ बरसात में।
3: बड़ी अच्छी थीम और लिरिक है आपकी फिल्म की।
2: अच्छा, अजी बनने दीजिए इसे, ओवर नाइट जीवन कला की जोड़ी फिल्मी दुनिया की सारी जोड़ियों को पीछे छोड़ देगी। लंदन में टी, पेरिस में लंच, न्यूयॉर्क में नाश्ता, हांगकांग में डिनर और बॉम्बे में।
3: ओहो, अरे अरे, आप लोग जलपान तो कीजिए।
0: चिंता ना करो बेटी, चिंता ना करो, हम लोग अब यहाँ से खाना भी खा कर जाएंगे। मेरे लिए तो घर में तुम्हें दोनों समय खाना बनाना पड़ेगा और सुबह उठकर 2 घंटे मेरे साथ भजन पूजन।
3: जी
1: भजन पूजन तुम जानो, पर मुंह अंधेरे मेरा हुक्का तैयार मिलना चाहिए।
2: मुझे बेटी चाहिए। फिर कला की साधना, बिना कला के क्या जीवन? आप मुझसे एग्री करती हैं ना कला जी?
3: बिल्कुल, मैं सभी से सहमत हूँ। आपके लिए बेटी, डैडी के लिए हुक्का और मम्मी के साथ कीर्तन।
1: शाबाश बेटी, अब जरा अपने पिताजी को भेज देना।
3: जी अभी भेजती हूँ। आसामी तगड़ा है,
4: काफी मोटा है।
2: डैडी, आसामी तगड़ा हो या मोटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल मेरी फिल्म के फाइनेंस का है।
3: काफी दहेज देगा शायद।
4: अगर मेरी मानो, यह मकान भी लड़का लड़की के नाम लिखवा लेना जीवन की माँ।
3: सुनो, नकदी में जो मिले उससे मेरे लिए कंगन हार।
2: नहीं मम्मी नहीं, नकदी से मेरी फिल्म का मुहूर्त होगा। कहिए खन्ना साहब, आपको हमारी लड़की पसंद आई?
0: लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन क्यों जीवन के बाबू?
1: हाँ जीवन की माँ, लड़की पढ़ी लिखी होशियार है, हमें भी पसंद है, लेकिन क्यों जीवन बेटा?
2: यस डैडी, मेरी फिल्म के लिए एकदम फिट, लेकिन
5: मैं जानता था कि मेरी बेटी आपको जरूर पसंद आएगी।
0: आपका विचार सही है, लेकिन
5: लेकिन क्या?
1: दरअसल हमारे भी 4 लड़कियां हैं और नीना की तो शादी तय भी हो गई है,
2: बस तिलक देना है।
5: ठीक है, पहले उसी की कर दीजिए, तिलक देकर छुट्टी करिए।
0: फिर आप जल्दी तिलक।
5: जी
0: आप तिलक में 20,000 नगद तो देंगे ही समझी जी, क्यों जीवन के बाबू?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, नीना की ससुराल वाले भी तो इतना ही मांग रहे हैं।
5: जी, वो तो इतना अधिक,
0: हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं जीवन को देखते हुए।
4: हमारा लड़का वकील बनेगा।
2: नो डैडी, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर।
0: अजी हम तो अपनी एक ही लड़की के लिए इतना मांग रहे हैं, वैसे मेरे लिए तो 10 साड़ियां ही काफी रहेंगी।
5: वो मिस्टर खन्ना,
1: आप मेरी फिक्र न कीजिए। अरे जीवन के लिए जब आप कपड़े देंगे तो 2 सूट पीस मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा। कुछ गलत कह रहा हूँ समझिए।
5: नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना सब कैसे।
1: देखिए, आपकी इकलौती बेटी है, सारी जमा पूंजी या मकान वगैरह सब उसी का तो है।
0: अरे हाँ, मकान की अच्छी याद दिलाए, समझी जी अपनी लड़की को मकान तो देंगे ही।
5: अरे लेकिन इतना सब मैं कहाँ से दूंगा, और मकान देने के बाद मैं कहाँ रहूंगा।
0: कला की शादी के बाद आपका बचा ही कौन है जिसके लिए आप रहेंगे
5: जी? ये तो आप लोग ही मांगे हैं क्या जीवन?
2: जी मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो कला का उपासक हूँ, बस फिल्म पूरी करने के लिए।
5: यानी?
2: डोंट वरी, फिल्म का हीरो मैं, हीरोइन कला, कहानी डैडी की और म्यूजिक मम्मी का, हिट फिल्म बनेगी, बस 5 लाख।
5: 5 लाख?
2: शुरू में इतने से ही काम चल जाएगा, वो धासु फिल्म निकलेगी, खन्ना सेठ ब्रदर्स की शानदार भेंट, बली का बकरा, फाइनेंस बाई पीके सेठ। वैसे एक रोल चाहे तो आप ही कर सकते हैं।
5: यानी आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं?
3: नहीं पिताजी, आप बलि का बकरा नहीं बनेंगे, इन मंगतों से मैं निपटती हूँ।
5: कला तुम?
3: हाँ पिताजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें बाहर से सुन ली और मांगी भी,
0: लेकिन बेटी हमने तो सब कुछ तुम्हारे लिए ही मांगा है।
3: हर साल अपनी बहू के लिए ही तो मांगती है। आपने सब कुछ तो मांगा, लेकिन एक चीज तो मांगना भूल ही गई।
0: वो क्या बेटी?
3: एक कनस्तर मिट्टी का तेल।
0: मिट्टी का तेल? लेकिन उसकी क्या जरूरत है?
3: जरूरत क्यों नहीं है, आखिर आपकी बहू मरेगी कैसे? एक दिन मोहल्ले में आपको चीख चीख कर कहना भी तो पड़ेगा कि आपकी बहू खाना बनाते वक्त स्टोव से जलकर मर गई।
5: बेटी,
3: एक कनस्तर तेल एक बहू को जलाने के लिए कम तो नहीं होगा?
5: तुम क्या कह रही हो बेटी? मिस्टर खन्ना, आप लोग इसकी बातों का बुरा न मानिएगा, दरअसल बड़ी सेंटिमेंटल लड़की है।
2: एक्सीलेंट, मेरी फिल्म के हीरोइन का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है।
0: हम लोग बच्चों की बातों का बुरा नहीं माना करते।
2: और फिर आपको हम सब ने पसंद कर लिया है।
3: झूठ झूठ बोलते हैं आप लोग, पिताजी की जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर नजरें हैं आपकी, आपको आपको पत्नी या बहू नहीं चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो?
3: ठीक ही कह रही हूँ पिताजी, ऐसी जगह शादी करने से अच्छा है आप मेरा गला घोट दे।
5: चुपचाप
3: गला घोट दे,
5: चुप हो जा। खन्ना साहब, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, बाहर का दरवाजा खुला है, जाइए और अपने बेटे के लिए किसी टकसाल में लड़की खोजिए।
0: समी जी
1: गई, ये मुर्गी भी गई। चलो जीवन बेटे चलें।
2: चलें तो मेरी शादी, मेरी फिल्म, मेरा मुहूर्त। आइडिया, वन मोर आइडिया, फिल्म का नया टाइटल, लड़की पसंद है
0: लेकिन।

0: हाँ पजवाई सुनत रहनी अभी आप लोग, झलकी लड़की पसंद है। देखल जाए इसमें जो बाटा कि सड़क पे बहुत दुर्घटना होता है,
1: बिल्कुल भैया। हाँ
0: इकर भैया मुख्य रूप से कारण ये होला कि यातायात के जो नियम बा ओकर ठीक ढंग से पालन अगर न होखले के वजह से ये घटना होता।
1: बिल्कुल
0: अगर ओकर पालन कर जाए तो शायद दुर्घटना बाटा उसमें बहुत कमी आ सकता।
1: भैया जगह जगह निर्देश भी लगल रहा है, वो निर्देश के देख के ही ध्यान से चले के चाहिए सड़क पर, और दहिने बाएं जरूर देख ले चाहिए।
0: हाँ, सब का अपने
1: हाँ, और अपने तेज तेज गति पर नियंत्रण भी रखे चाहिए।
0: अपन भाई जो भी अपन बाएं अपने से बाएं चले मोड़ बात, वहाँ अपन गाड़ी धीमा कह दें, सामने जी आओ तो देख के अपन चले अपने किनारे उनके साइड दे दें। ये सब कह के वो अपने बात है कि दुर्घटना के बहुत हद तक बचाव।
1: बिल्कुल भैया, देखा हम चाहते हैं कि अपने पंच भाई लोगों के गीत और सुनवा दिया जाए।

0: शर्मा और उनके साथी लोगों के स्वर में लोकगीत हम उनके सुनल गए। अपने पंच भाई सुन लें। यही के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय समाप्त होत बा। चलल जा। पंचों
1: पंचों जय हिंद।

ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे क्रमशः भोजपुरी तथा हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार भेल। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनभवन के गांधी सभागार में नया मंत्रियन के शपथ दियावलिनी। मंत्रिमंडल के नया सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी आ मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री और कृष्णा पासवान सुरेंद्र दिलेर हंसराज विश्वकर्मा आ कैलाश सिंह राजपूत राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले ले। योगी सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल आ सोमेंद्र तोमर यह मौका पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ले ले। नया मंत्री लोगी राज्यपाल आ मुख्यमंत्री के पुष्पगुच्छ देकर उनकर अभिनंदन कई ले। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भाजपा का महामंत्री संगठन धर्मपाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रह ले। प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री कहले हवे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगुवाई वाली सरकार बिजली व्यवस्था में बढ़न सुधार कैल गेल हो। तकनीकी सुधारण की जरिया से मानवीय हस्तक्षेप कम कैल गेल हो, जबने से भ्रष्टाचार पर रोक के लगावल जा रह सके। आ जनता के राहते मिले वहाँ के कहले कि प्रदेश के बढ़िया बिजली ढांचा देवे बदे लगातार कोशिश जारी बा। ऊर्जा विभाग का उपलब्धि गिनावत श्री शर्मा कहले कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयन के 24 घंटा तहसीली मुख्यालयन के 22 घंटा अ ग्रामीण इलाकन के 20 घंटा बिजली आपूर्ति दिहल जा रहल हो। वहाँ के बतवले कि सरकार 165 लाख नया बिजली कनेक्शन देले हवे, 59 लाख से बेसी स्मार्ट मीटर लगावल गयल हो और 26,000 किलोमीटर से बेसी पारेषण लाइने का विस्तार कैल गल हवे। एकरे अलावा ग्रामीण इलाकन में ढेरी संख्या में निजी नलकूपन के बिजली कनेक्शन उपलब्ध करावल गेल बा। अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र

0: बतवले हवे कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुकेल बा। परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ी रहल हो। श्री मिश्र आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति का बैठक में शामिल भेले के बाद संवाददाता लोगों से बतियापत रहले। वहां के बतवले कि मंदिर परिसर में राम मंदिर आंदोलन में अपन प्राण न्यौछावर करे वाले कार सेवकन के याद में एगो भव्य शहीद स्तंभ बनावल जा रहे हो, जेके 15 जून ले पूरा हो गए लेके उम्मीद बा।
1: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया, शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। फिर बाउंड्री वॉल जो बननी है 4 किलोमीटर, उसमें लगभग साल लगेगा। प्रयास है कि हम 2026 में उसे भी पूरा कर।
0: श्री मिश्र बतावले कि परिसर में नया जमाना का म्यूजियम का निर्माण चली रहल हो। म्यूजियम में 20 गैलरी बनावल जाए, जिसमें एगो 7D तकनीक आधारित गैलरी श्रद्धालुओं के मंदिर भ्रमण जैसन अभुनव अनुभव कराए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज वाराणसी के बलदेव इंटर कॉलेज में संपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज के साथ 183 जोड़न का विवाह करावल गई। यह मौका पर नया विवाहित जोड़न के 60,000 रुपये के चेक परिधान उपहार का समान अभिहा प्रमाण पत्र दिहल गई। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से सतही सज्जू जनप्रतिनिधि लोगिन विवाहित जोड़न पर फूल बरसा कर उनके सम्मुख उज्जवल भविष्य का कामना कई लें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के ओडिसी प्रवक्ता संवर्ग का 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में संपन्न हो गई। आज पहला पाले में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत आ मनोविज्ञान के साथ ही 5 विषयन आ दूसर की पाले में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी आ कला के साथ ही 4 विषय का परीक्षा आयोजित भेल। सज्जो जिलन में परीक्षा के लेके जिला प्रशासन सतर्क रहल, कहीं से कौनो तरह के शिकायतें नहीं मिलल। हापुड़ जिला के काली देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर भेल सड़क की दुर्घटना में एगो बच्चा और दुगो महिला लोगों के साथ ही 3 जने का मौत हो गई। पुलिस सूत्र बतावले कि बरेली से लुधियाना जा रहे एगो कैंटर डिवाइडर से लड़ी के पलट गई, जिसमें 3 लोग दबी गई और वही जुग में मौत हो गई। यह दुर्घटना में 2 जने और घायल हो गई, जिन्हें इलाज बदे अस्पताल भेजी दिहल गई। प्रदेश का करीब सज्जो जिलन में पछला 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहले आ तेज घाम निकलने के नाते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कैल गेल हो। मौसम के यह बदलाव के नाते लखनऊ के साथ ही कई जिलन में उमस भरी गर्मी पड़े लागल बा। मौसम विभाग बहने से ही एक बेरी फिर मौसम में बढ़न बदलाव का पूर्वानुमान चतवले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन के गांधी सभागार में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री तथा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। योगी सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। नए मंत्रियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बिजली व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं। तकनीकी सुधारों के माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप कम किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके और जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है, परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मिश्र आज अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों की स्मृति में एक भव्य शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
1: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया, शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है उसका निर्माण 15 जून तक पूर्ण हो जाएगा। बाउंड्री वॉल जो बननी है 4 किलोमीटर, उसमें लगभग साल लगेगा। प्रयास है कि हम 2026 में उसे भी पूरा कर।
0: श्री मिश्र ने बताया कि परिसर में अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण भी जारी है। म्यूजियम में 20 गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें एक 7D तकनीक आधारित गैलरी श्रद्धालुओं को मंदिर भ्रमण जैसा अनुभव कराएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज वाराणसी के बलदेव इंटर कॉलेज में संपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज के साथ 183 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को 60,000 रुपये का चेक, परिधान, उपहार सामग्री और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा करके उनके सुखद और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग की 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में संपन्न हो गई। आज प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। सभी जिलों में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा, कहीं से किसी तरह की शिकायत की प्राप्ति नहीं हुई। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेस वे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग कल से एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जता रहा है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: गंदगी को दूर भगाएं, साफ

0: सफाई को अपनाएं।
1: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
4: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
3: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: पंचों जय जवान जय किसान। हाँ भैया देखा, अपन कार्यक्रम शुरू हो गए।
6: भैया देखा अपने किसान भाई बालन अपन खेती और बारी
5: बिल्कुल
6: दोनों साथे लोन।
5: हाँ हाँ साथे बा, सही
6: खेती
5: है।
6: अपन करबन हो गया, साथे साथे बाग बगीचा भी अपन लोन
5: है। सही है।
6: विशेष तौर पे अपन जो बाकी फलदार जो बगीचा बा ओकर जरूर अपन बगीचा लोन लगौले रहना भैया। वैसे तो अपने बगीचा के ध्यान लो रखबे कर लें, विशेष तौर पे अपन खास तौर पे जो गर्मी का धमक पड़ता इमन अपने जो बाटे बगीचा के सिंचाई के व्यवस्था पर बड़ा विशेष ध्यान दे।
5: बिल्कुल, अक्सर ही देखा जाला कि किसान भाई लोग फल खातिर परेशान रहे, फल आ जाला ओकरे बाद पेड़ के का स्थिति बा, पर कम में ध्यान दे लें और फल पर ही ज्यादा ध्यान दे लें, और फल तोड़ने के बाद पता चला कि कुछ दिन ले भुलाई गई लें कि बागी में पेड़ बा और कौन स्थिति में बा, एकर जानकारी उनके कम में रह ले।
6: भैया सही तू कहला है, जब भुला जाइ लोग ठीक से ओकर व्यवस्था ना करिए तो अगला बेर जन बाटे फल तो मन नहीं आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: वो प्रभावित हो जाए। इन्हें जन होशियार किसान भाई बना ओकर समय समय पे सिंचाई व्यवस्था उर्वरक प्रबंधन गुड़ाई निराई सब करत रहल हैं।
5: कुछ डाल भैया खराब हो जाए उके भी लोग हटा दे लें, बीच बीच में
6: तो प्रबंधन करत रहल हैं, ये सब के व्यवस्था करिए तो अगला जन फलत बाटे अपन अधिक से अधिक अपन फलता वाला।
5: अब भैया देखा खेती के भी अगर काम लोग कर रहे हैं तो कभी कभी जो है नाइट्रोजनी उर्वरक के ज्यादा प्रयोग कर दिले, यूरिया के अधिक प्रयोग कर दिले, तो ऐसने में का खराब स्थिति बन जाले उनके माटी खातिर, उनके फसल खातिर, और कुल मिला के कर का असर होला मिट्टी पर फसल पर, यह विषय पर जानकारी देते हैं भैया जेपी सिंह, और इनसे बतियाओ थे भैया कृष्णचंद्र, ई भेंट वार्ता हमन के सुनल जाए।
7: जय प्रकाश सिंह जी, आप वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक बीच कृपको गोरखपुर में ही अपने गाँव में एक चीज़ देखे में आवला तो अपन कितना पंच भाई ऐसा बाटे जो उनकी खानिक उर्वरक के नाव पे यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा बाटे बिना कोनो जांच उच कराए। यूरिया का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा बा एकर अपने फसल या माटी के संरचना पे का जो बा विपरीत असर पड़ेला।
8: किसान भाइयों, आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि खेती किसानी में पोषक तत्वों की जब भी बात होती है तो उनकी प्रतिपूर्ति रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाने की सलाह वैज्ञानिक देते हैं। जो 16 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें 3 प्रमुख तत्व हैं जिनको नत्रजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में आप जानते हैं। नत्रजन की प्रतिपूर्ति हमेशा यूरिया के माध्यम से किसान करता रहा। वर्तमान समय में खेती किसानी की लागत बढ़ रही है, ऐसे में खेती किसानी के जो निवेश हैं उनको अगर आप बुद्धिमानी पूर्वक सोच समझ के वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी और वन वांछित उपज नहीं मिलेगी। अच्छी उपज मिले, आपकी मृदा की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए आपको इस समसामयिक विषय पर ध्यान देना होगा। यूरिया प्रायः नत्रजन का सबसे प्रमुख स्रोत है जिसमें 46% नत्रजन पाया जाता है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 4:2:1 का एक संस्तुत अनुपात वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है कि यदि 4 किलो नत्रजन का प्रयोग करते हैं तो 2 किलो फास्फोरस का और 1 किलो पोटास की मात्रा डाली जानी चाहिए, लेकिन पोटास और फास्फेट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किसान भाई अपनी फसल का तात्कालिक प्रभाव देखते हुए रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का चयन कर लेते हैं। जब हम यूरिया संस्तुत मात्रा से अधिक प्रयोग करते हैं फसल के ऊपर तो सबसे पहले हमको दिखाई पड़ता है कि हमारी फसल खूब हरी भरी हो गई, और जब खूब हरी भरी फसल होती है तो उसके एकाध सप्ताह बाद हमको एक परिणाम दिखाई पड़ता है, किसान दौड़ता हुआ जाता है वैज्ञानिकों के पास, कृषि रक्षा केंद्रों पर जाता है।

0: जाता है कृषि अधिकारियों के पास जाता है, साहब हमारे खेत में कीड़े लग गए। किसान भाई, जब कभी भी आप संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी हरी भरी फसल कीड़ों के लिए उपयोगी हो जाएगी, आसानी से उसमें कीट व्याधियाँ लग जाएंगी तो आपकी उपज प्रभावित हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है कि यदि आपने यूरिया की संस्तुत मात्रा अधिक डाली तो आपकी जो मिट्टी है उसमें जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे बोरान है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, इन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता मिट्टी में रहते हुए भी आपके पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपयोग करने की स्थिति नहीं बन पाती है, जिससे आपकी उपज पुनः प्रभावित होती है। जब उपज प्रभावित होगी और मृदा में अवांछित रूप से आप यूरिया मिलाएंगे तो जो मृदा की उर्वरता गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। तो किसान भाई, आप पुनः एक बार इस पर विचार करिए। विचार करने के बाद से आप अपने मिट्टी का स्वयं भी जांच करके देख सकते हैं। प्रयोगशालाओं में तो मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध भी है, लेकिन आप स्वयं भी मिट्टी की जाँच कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यूरिया अधिक से अधिक मात्रा में डाली जा रही है वहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग हो रहा है कीट व्याधियाँ कम लगती हैं। जब यूरिया आप अधिक डालते हैं तो आपको उसका प्रतिफल क्या मिलता है कि उससे जो उपज आती है, जैसे जो कंद वाली फसलें हैं, आलू है, तो वह आपको जल्दी सड़ जाता है, आप उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं। प्याज है, उसमें गलन की बीमारी आ जाती है, वह प्रभावित होने लगती है। साथ ही साथ आपके फसल पर जो उसका गुणवत्ता है, जो उसकी पोषक तत्व की क्षमता है, जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसमें भी जो है विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके नाते से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस फसल से जिसमें यूरिया अधिक मात्रा में डाली गई है उससे हम किसान भाई प्रभावित होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब प्रारंभिक दिनों में आप 9 किलो के आसपास जो है उर्वरकों का प्रयोग करते थे तो आपको उससे 8 गुना उत्पादन मिलता था। आज स्थिति ये हो गई है कि उर्वरकों के प्रयोग को डेढ़ा करने के बाद भी हमारा उत्पादन या तो स्थिर हो गया है और या जो संस्तुत उत्पादन की गुणवत्ता है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष लगभग 50% ही उत्पादन प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ आप किसान भाई यह देखते हैं कि यदि आपने सब्जी लगाया हुआ है तो टमाटर आपका फट जाता है, आपने बैंगन लगाया हुआ है तो उसमें बंचिंग हो जा रही है, मुजैक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भिंडी की जो खेती किसान करता है वो कहता है, साहब भिंडी हमारी प्रारंभ में तो बहुत हरी भरी थी लेकिन जब हमने उसमें खादों का प्रयोग किया, यूरिया डाला जो है, तो उसमें पीलापन हो गया, जिसको गांव में लोग कहते हैं कि भिंडी के पौधे में कुष्ठ रोग लग गया जो है, जिसे वैज्ञानिक मुजैक कहते हैं। यह भी अत्यधिक यूरिया के प्रयोग के कारण ही हो रहा है। किसान भाइयों से विशेष अनुरोध यह है कि जब कभी भी वह उर्वरकों के प्रयोग की बात करें तो संतुलित उर्वरक प्रयोग, जो संतुलित मात्रा है, जो एक निर्धारित मात्रा है, जो भारत सरकार द्वारा आजकल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा संस्तुति की जा रही है, उनका प्रयोग करें। साथ ही साथ यूरिया के बारे में किसान भाइयों को बताना है कि वर्तमान समय में भारत सरकार ने यूरिया के अधिकतम उपभोग क्षमता, जैसे किसान जानता है कि यदि वो 100 किलो यूरिया डालता है तो 46 किलो नत्रजन मिलना चाहिए उसका जो है, प्रतिशत में अगर बात की जाए जो है तो 36-40% उसका उपभोग होना चाहिए, लेकिन वो 18-21% के आसपास ही उपभोग हो पाता है। उसमें वृद्धि करने के लिए भारत सरकार का सुझाव है कि जिन जगहों पर फसल लगी हुई है फसल में नीम लेपित यूरिया का प्रयोग किया जाए, उससे स्थानीय स्तर पर जो नीलगाय है, घोड़रोज है, ऐसी जो व्याधियाँ हैं इनसे तो किसान की फसल बचती ही बचती है, साथ ही साथ यूरिया का जो उपभोग है वह लगभग 50% तक पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोग कोशिश यह करें कि यूरिया में नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करें और वह भी वैज्ञानिकों द्वारा जो संस्तुत मात्रा है उसका प्रयोग करें, और यदि यह भी संभव नहीं हो पाता है तो अपने अगल बगल के जो भी कृषि रक्षा केंद्र हैं, कृषि इकाइयाँ हैं, कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी रखने वाले कार्यालय हैं, वहाँ से जो है संस्तुत मात्रा की जानकारी करके और तदनुसार ही यूरिया का प्रयोग करें तो उचित रहेगा, और इससे आपकी मृदा स्वास्थ्य में भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ जो आप उससे उपज लेंगे जो है वह उपज भी संतोषजनक।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ,
3: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: किसान भाई, विज्ञापन संदेश के पहले सुनल गेल हमन के भेंट वार्ता, यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी और फसलों पर प्रभाव, जेपी सिंह से बतियाओ तरण भैया कृष्णचंद्र, दिहल जाए लोन के धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि सत्यप्रकाश शर्मा के स्वर में सुनल जाए एक ठो लोक भजन।

0: भैया देख लिया सतप्रकाश शर्मा और साथी की आवाज में इतना बढ़िया भजन सुन लें अपने पंच भाई लोन। भैया अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ा सुन लिया पशुओं में फफूंदी जनित रोग ये पर डॉक्टर एहसन लाल जी जानकारी देते ना अपन पंच भाई सुने और लाभ उठा।
1: भाइयों हम सभी लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी के साथ ही साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पशु स्वस्थ रहें, निरोग रहें और उनसे अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। इसी के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे पशुओं पर लागत लग रही है वो कम से कम लागत हो और गुणवत्तायुक्त उत्पादन हमको प्राप्त हो। इसी क्रम में हमारे पशुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि वो स्वस्थ बने रहें, निरोगी रहें, किसी प्रकार का रोग न होने पावे। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु का मौसम वहाँ रहता है, जाड़े का मौसम होता है और ग्रीष्म ऋतु आती है, मौसम के परिवर्तन के साथ ही साथ पशुओं में विभिन्न बीमारियों का भी संक्रमण बढ़ता रहता है, जिसमें एक सबसे अहम जो बीमारी है वो फफूंद जनित बीमारी है, क्योंकि फफूंद

0: ऐसी जीवित चीज होती है जो हमारे वातावरण में टहलती रहती है और हमारे पशुओं में संक्रमित करती रहती है, क्योंकि ये जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है, वातावरण में नमी आती है, उस समय इसका संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ तीन ऋतुएँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, वर्षा ऋतु और हमारी जो है जाड़े की ऋतु होती है और गर्मी ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जो फफूंद जनित रोग है उसके संक्रमण का सबसे अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। फफूंदी पशुओं में कई तरीके के माध्यम से हमारे पशुओं के शरीर में पहुंचती है। एक तो सांस प्रश्वास के माध्यम से पहुंचती है, उनके जो है मुंह के माध्यम से पहुंचती है। क्योंकि जानवर मिट्टी के संपर्क में रहता है और संपर्क में आने के साथ ही साथ जो फफूंद को फैलाने वाले कारक हैं उसके, जिसको हम अंग्रेजी में माइसीलियम का भी शब्द देते हैं, छोटे छोटे जीवधारी होते हैं, वो हमारे पशुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और चमड़ी के नीचे जाकर के जो वो निवास करते हैं। इस प्रकार से कई बीमारियां फैलाते हैं। मुख्य रूप से सबसे अहम जो बीमारी आती है हमारे पशुओं में वो देखने में आती है दाद। जिस तरह मानव में भी दाद होती है, उस तरह हमारे पशुओं में भी दाद होती है, जो कि फंगस की वजह से होती है। और ये फंगस जो है पशुओं के गले के पास, गलकंबल के पास और अन्य जहाँ पतली पतली चमड़ियाँ होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, माथे के पास हो जाती है। तो ये फंगस करता क्या है कि एक गोल गोल चकत्ते के रूप में उभरता रहता है और वो खजुराहट भी पैदा करता है, जिससे पशु को जो है बड़ी घबराहट सी होती है। और धीरे धीरे ये माइसीलियम जो है वो चमड़ी के नीचे कई जगहों पर फैल जाता है और पशु की जो है वो चमड़ी बिल्कुल ख़राब सी दिखती है, देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, पशु बेचैन रहता है, जिससे उसका दूध उत्पादन प्रभावित होता रहता है। तो इस दाद से बचने के लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जहाँ भी हमारी पशुशाला हो वो साफ सुथरे रखें, ऊंचे स्थान पर रखें, नमी का प्रकोप न होने दें और अपने पशुशाला में चूने का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि चूने का प्रयोग करने से क्या होगा कि जो भी वहाँ पर अफूंद फफूंद या अन्य जो भी जीवाणु कारक हैं वो बिल्कुल वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। यदि हमारे किसान भाई 5% कापर सल्फेट का घोल बना लें या चूने में ही थोड़ा सा सल्फर मिला लें, तो ऐसे को 5% के कापर सल्फेट के घोल से अगर हम पशु को नहलाते हैं, सफाई करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो किसी प्रकार की उनके शरीर पर जो है वो फंगस उगने नहीं पाएगा। क्योंकि फंगस का सबसे ज्यादा कारण जो होता है, जैसा जैसा तापक्रम बढ़ता है, वातावरण में नमी रहती है, तो ये बहुत तेजी से बढ़वार होती रहती है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे उसका तापक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे फंगस भी बढ़ता है। ज़्यादातर जो फंगस की बढ़वार होती है वो लगभग 80% वर्षा ऋतु में फंगस से हमारे पशु ग्रसित होते हैं और 15% हमारे पशु जो है वो जाड़े में फंगस से प्रभावित होते हैं और लगभग 5% जो है हमारे जो वो गर्मी में जो है पशु प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से अगर हम सफाई रखते हैं, पशुओं को साफ सुथरा रखते हैं और जहाँ तक हो सकना चाहिए जो हमारे पशु हैं उनके जो है बाल अवश्य काट देना चाहिए। क्योंकि बाल काट देने से क्या होगा कि वहाँ पर फंगस जो है चमड़ी में ज़्यादा समय तक रुक नहीं पलाएगा। नियमित रूप से उनको नहलाना चाहिए, सफाई करते रहना चाहिए, इस प्रकार से हम फंगस से निवारण पा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है हमारे पशुओं में वो आँखों में होती है। क्योंकि हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, जो आँखें नम होती हैं वहाँ पर फंगस जो है वो जा करके रुक जाता है, आँखों से कीचड़ आना शुरू होता है, आँखों से पानी होता है, कभी कभी तो आँखों में सूजन सी हो जाती है और ऊपरी पलक इतनी तक सूज जाती है कि पशु को दिखाई भी कम पड़ने लगता है, बिल्कुल ढक सी जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ऐसी स्थिति में जब भी ये प्रकोप होता है निकट के पशु चिकित्सालय पर जाएँ, पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका जो उचित जो है ट्रीटमेंट दवा का उपयोग करें। हम तो ये भी कहेंगे कि ये चीज़ होने ही ना पावे आपके पशु में, इसलिए पशुशाला में जो भी चरनी है जहाँ पर पशु बांधते हैं वह सूखा स्थान बनाए रखें, सूखा स्थान बनाए रखें और उस स्थान पर उजाला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकाश जाएगा, धूप जाएगी तो वह स्थान सूखा रहेगा, किस तरीके से किसी प्रकार की फंगस जो वो ग्रो नहीं उगने नहीं पाएगी। सबसे तीसरी जो हमारे पाचन प्रणाली पर भी फंगस का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी हम दाना चारा खिलाते हैं देखने में आता है कि हम दाना चारा बिल्कुल स्वस्थ खिला रहे हैं, लेकिन जो कटे हुए चारा दाना हैं या उन पर फंगस उगाता है। जिस तरीके से उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, यदि आप कटा हुआ मूंगफली का दाना खाइए उस पर फंगस लगा रहता है तो वो आपको कड़वाहट सा उत्पन्न करता है खाने पर, वो उस तरीके से फंगस है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने पशुओं को गेहूं या गेहूं का दर्रा खिलाते हैं या नमखली खिलाते हैं, ऐसा दाना मिश्रण बनाते हैं कि जो कि बिल्कुल सूखा रहता है लेकिन ज़्यादा समय तक एक स्थान पर इकट्ठा रखने के बाद उसमें फंगस उगाता है, और वो फंगस जो है युक्त अगर हमारे पशुदाना खा लेते हैं तो अंदर में कई प्रकार की बीमारी करते हैं, जिसको कि जो है अफ्लाटॉक्सिन एक जहर होता है उस फंगस से, वो ठीक जा करके लीवर को जो है नुकसान करता है। लीवर को डैमेज इस तरीके नुकसान इसलिए करता है क्योंकि लीवर जो है वो पाचन प्रणाली को देखता है, जो भी ऊर्जा होती है वो पशुओं को मिलती है, यदि लीवर ही गड़बड़ हो जाएगा तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो तंत्र जो है वो बेकार जाएगा। तो जहाँ तक होना चाहिए बिल्कुल दाना साफ़ सुथरा युक्त खिलाएं, जिससे पशुओं में फंगस जनित ये रोग जो है वो ना होने पावे। इसी के साथ ही साथ एक सबसे अहम जो बीमारी होती है कि पशुओं को पतली दस्त आने लगती है, जिसको काक्सीडियोसिस कहते हैं। ये काक्सीडियोसिस मुख्य रूप से फंगस के द्वारा होता है। जो भी हम फंगस युक्त दाना खिलाएं और उसी के साथ ही साथ जब मिट्टी के संपर्क में पशु आता है तो वो भी उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाता है, और ये फंगस जो है शरीर के में जा करके आंतों में निवास करता है और पाचन प्रणाली पर भी विकृत प्रभाव डाल देता है, जिससे पशु को पतली दस्त हो जाती है। हम हमेशा किसान भाइयों को सिफारिश करेंगे कि जब भी पशुओं को पतली दस्त हो, पेचिस हो, तो गोबर की जांच जरूर कराएं, क्योंकि गोबर की जांच कराने के उपरांत ही पता लग पाता है कि इसको जो पतली दस्त हो रही है ये किस कारण से है। ये ज़्यादातर फंगस की वजह से होती है, तो फंगस की युक्त को जो मारने के लिए हमारे निकट के पशु चिकित्सालय पर पशु के गोबर की जाँच कराएँ, तद उपरांत उसका जो है वो इलाज कराएँ। यदि फंगस से है तो वो उसका जो हो ठीक निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के रूप में हमारे पशुओं में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो थनैला बीमारी है। थनैला एक ऐसी बीमारी होती है जो पशुओं का पूरा दूध उत्पादन प्रभावित हो जाता है, और हम पशुओं को दूध उत्पादन के लिए ही पालते हैं, अच्छा हमारा पशुधन होता है, यदि पशुओं में दूध उत्पादन ही गड़बड़ हो गया तो सब कुछ हमारी लागत ख़त्म हो जाती है हमारे पशुओं में। यहाँ तक होता है उसकी छीमियाँ जिधर से देखते हैं वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती हैं। तो थनैला बीमारी किस प्रकार से है इसकी जाँच करनी चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में जो होता है कि दूध के छर्रे आते हैं, उसकी छीमियाँ मोटी होने लगती हैं, और मोटी होने के साथ ही साथ उसमें एक चिकनाहट से आती है, दर्द भी हो जाती है और लालिमा से शुरू हो जाती है। हमारे किसान भाई बड़ी मुश्किल से उसका दूध निकालते हैं, और कुछ दिनों बाद उसका दूध निकलना भी बिल्कुल बंद हो जाता है और उसमें बड़ा कड़ापन आ जाता है। ये एक फंगस की वजह से होता है।
1: भैया देखा ही तो रहा जानकारी, पशुओं में फफूंदी जनित रोग जानकारी देते रहना डॉक्टर एसएन लाल दिहल जैन के, धन्यवाद
2: भैया। एक साथ अपने कार्यक्रम का समय भी पूरा होता चले के
1: पंचों जय जवान जय किसान।

0: किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
5: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
6: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
5: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: आरबीआई कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
10: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
11: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
11: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
11: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
10: For details, log on to www.ddindia.com।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी व साथी।
12: राधा की के राद

से तू गईला श्याम भैला नीर मोहिया बन पवन ढूढ़ली सुजनाड़

एक रोज लाओ के लेके सिया जी सकारे पानी लेवे बाजे गईली गंगा के किनारे पानी लेवे बाजे गईली गंगा के किनारे।

अहूल सानी करलिया स्नान मैया अहूल सानी राज राज कर माई सोर हो सिंगार

0: इस देवी गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशमार। देशमार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भोजपुरी वार्ता। भारतीय संस्कृति की विशेषता विषय पर वार्ताकार हैं राम किशोर यादव।
1: भारतीय संस्कृति अपने में कई विशेषता समेट ले बा। ए में प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य सब भाव समाहित बा। यही के साथ प्रत्येक जीव में ईश्वर के अंश की उपस्थिति भी मानल जाला। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रहेला। विभिन्न प्रकार के ऋण भारतीय जीवन संस्कृति में विद्यमान बा। दैव ऋण, पितृ ऋण आदि। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता के भाव हमेशा दिखेला। प्रकृति के अन्न जल से हमन के शरीर ऊर्जा पावेला। सूर्य के दृष्टि से, प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि गतिमान बा। वायु, वर्षा सब प्रकृति के ही अंग हवे। यही से हमन के संस्कृति में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव रहेला। परिवार और समाज में मनुष्य के विकास होला। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन क्रम के क्रमशः चार भागों में बाँटल गई बा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। प्रथम अवस्था में व्यक्ति के पठन पाठन के प्रमुख स्थान रहल। जब उ प्रारंभिक जीवन के अपनी असीम ऊर्जा के उपयोग अध्ययन, मनन और संस्कार प्राप्त में करत रहल। द्वितीय भाग में गृहस्थ में मनई विवाहित जीवन में प्रवेश कई के परिवार निर्माण और संतानों के लालन पालन और विभिन्न गृहस्थ धर्म के पालन करत रहल। चौथी अवस्था में उ स्वयं के परमार्थ मार्ग में लगाकर ईश्वर भक्ति में लग जात रहल। भारतीय संस्कृति न केवल लौकिक जीवन के दर्शन करावत रहल बल्कि आदमी के आध्यात्मिक उन्नति पर भी बल देत रहल। ऐसने में व्यक्ति सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा से पहचानल गए, जिसके विकास की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलत रहल। हमन के देश कई बरस तक गुलाम रहल। गुलामी व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डाले ले। व्यक्तित्व में, मानसिकता में, मनोस्थिति में सब में गुलामी के प्रभाव दिखेला। गुलामी धीरे धीरे मनई के मानसिक रूप से कमजोर कई देवेले, जेकरे प्रभाव कई पीढ़ी तक दृष्टिगोचर होते दिखेला। गुलामी के प्रभाव व्यक्ति के भाषा, विचार, रहन सहन सब पर पड़ेला। शासक वर्ग की संस्कृति, सभ्यता गुलाम वर्ग के प्रभाव पूर्ण लगेले। भारत में भी धीरे धीरे प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति पर प्रभाव पड़े लागल। अपने देश की बुनियाद में जहाँ त्याग, तप, दया, संतोष, दान, शांति, सेवा, समर्पण, सदाचार के महत्वपूर्ण स्थान रहल, वहीं एकर जगह अब भौतिकवाद और भोगवाद ले लेलस। भाषा पर भी एकर प्रभाव पड़ल। देववाड़ी संस्कृत और हिंदी पर एकर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल। संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा खाली गुरुकुल विद्यालय में रहल गई। हिंदी माध्यम से शिक्षा के महत्व कम हो गई। अंग्रेजी के जगह जगह प्रयोग आम बोलचाल में होए लागल। धीरे धीरे ये शिक्षा के माध्यम बन गई। हमन के अपने सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के यह समय जब ओकर महत्व पूरी दुनिया के समझ में आवल बा, तब हमन के ओसे दूरी बनावत हैं। आज हमन के पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होके अपने प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के अनदेखी करत रहें। भौतिकवाद ओपर भी हावी बा, जेमें जीवन के चरम लक्ष्य खाली सुख के उपयोग ही बा। ओकरे बाद भी आज मनई अशांत और दुखी बा। अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कैले के बाद भी मनुष्य अपने वर्तमान से असंतुष्ट बा। एक समय रहल जब भारत के विश्वगुरु के उपाधि से संबोधित करल गए रहे। दुनिया भर के विद्वान अध्यात्मवाद के शिक्षा लेवे खातिर यहाँ आवत रहलें। आज गुड़ी से गुड़ी भारतीय भी जब ले ओकरे लगे विदेश के डिग्री ना रहे, तब तक ओका सम्मान ना होला। हमन के अपन समृद्ध संस्कृत के अगर गहराई से देखी त ई दुनिया के सबसे उन्नत संस्कृति एवं प्राचीन संस्कृत रहल। लेकिन आज हमन के संस्कार परिवर्तन हो गई बा। माता पिता, बाबूजी, माई शब्दन में जवन माधुर्य बा, उ मम्मी पापा शब्द में नहीं खे। हमन के रहन सहन के तरीका भी बदल लगली। कार्य संस्कृति बातचीत में अंग्रेजियत हावी हो गई। हमन के पश्चिमी सभ्यता के अनुयायी बने लगली। विदेशी ठाट बाट, आराम तल भी पसंद आवे लागल। जबकि अपने संस्कृत में मेहनत, ईमानदारी, जुझारूपन, कठिन परिस्थिति में निर्वहन और दूरदर्शिता रहल। आज मनई स्वार्थपरता सीख के आत्मकेंद्रित हो गई। आज कुछ परिवार में माता पिता सिर्फ अपने लइकन के बीच में रह के एकाकी होत हमें, तब उनके बाल बच्चे भी यही व्यवहार सीख के अपने व्यवहार में उतारत हमें। कहल जाला बच्चे बड़े लोगों से ही स्वतः सीखे लें, जैसन उ देखल हमें वैसे ही करत हमें। आज माता पिता बड़े बुजुर्गन के सम्मान ओ ढंग तौर तरीका से नाई हो पावत बा जवन पहले रहे। काहे से कि पहले कर्तव्य बोध के भाव रहे। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की व्यवस्था रहे। गुरुकुल के अनुशासित जीवन में छोट बड़ अमीर गरीब सबके खातिर समान नियम रहे। छात्र अपने आवश्यकता के सब कार्य स्वयं करत रहें। यहाँ तक कि भिक्षा ग्रहण करके गुरु के समर्पित कई के भोजन के व्यवस्था विद्यार्थी जीवन से ही करके व्यवहार में रहें। समाज के लोग भी ससनेह इन लोगन के सहायता करत रहें। काहे से कि हर घर के लइका या विद्यार्थी कहीं ना कहीं कौनो गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करत रहें। सांस्कृतिक विरासत में भाषा पर भी ध्यान देवे के पड़ी। आज अधिकांश उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी बन गई बा। आपन मातृभाषा जवन बचपन से ही आदमी ग्रहण करत आई बा, ओसे पृथक एक दूसर भाषा में अध्ययन कैल असुविधाजनक हो जाले। वर्तमान में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में परिवर्तन आ गई बा। पहले शिक्षक समाज में सम्माननीय पद पर आरूढ़ रहत रहलें, उनके प्रति सम्मान में राजसत्ता भी रहत रहल। लेकिन आज शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के स्वरूप प्रकृति बदल गई बा। गुरुजनों के सम्मान के भावना लुप्त हो रहल बा। आज भारतीय परिवार जवन विश्व में संयुक्त परिवार खातिर जानल जात रहे, आज रोजी रोटी के चक्कर में परिवार से दूर होते ही एकाकी परिवार बना लेते रहे। पृथक परिवार के गठन आत्मकेंद्रित स्वार्थपरता सहनशीलता के अभाव संयुक्त परिवार के तोड़ रहल बा। संयुक्त परिवार में जहाँ एकता अखंडता पर बल मिलत रहे, छोट लोग बड़े से प्यार दुलार स्नेह पावत रहें, संरक्षण एवं आर्थिक मदद रहें, सुरक्षा रहल, वहीं एकाकी परिवार तनाव में रही के प्रगति में स्वयं बाधक बनत बा। अब मनई स्वयं के ही सर्वोपरिमान ले ले बा। अपने प्राचीन संस्कृति में स्त्रियन के बहुत सम्मान रहे। संस्कार यज्ञ राजकाज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेत रहें। लेकिन आज स्थिति बदल गई बा। आज महिलाओं पर होए वाला अत्याचार, घरेलू हिंसा, दहेज

0: हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री के प्रति सम्मान के विचार में परिवर्तन हवे। जबकि अपने संस्कृत में कहल गईल बा कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एकर वास्तविक अर्थ समझे के चाहें, भारतीय संस्कृत में मूल तत्व के समझे के चाहें। इमें प्राणी मात्र के खातिर दया भाव नइखे। पेड़ पौधा, नदी, कुआं, झील, फसल, धरती, सर्वधर्म सम्मान के प्रति आदर भाव बा। हमन के संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम के भाव बा। हमन के अपने प्राचीन भारतीय संस्कृत पर गर्व करे के चाहें, अपने संस्कार पर चिंतन करे के चाहें, अपन गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान और आदर के पुनः स्थापित करे के चाहें।
1: रामकिशोर यादव से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी वार्ता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बुंदेली लोकगीत।

विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है।

समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और

0: विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: फिल्म संगीत में प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म है मोहब्बतें।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म थी मोहब्बतें। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा विषय पर वार्ताकार हैं अभिषेक पांडे, प्राचार्य डायट, और इनसे बातचीत कर रही हैं अंकिता मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं एक ऐसा विषय जो आजकल अक्सर चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद, प्रशिक्षक और डायट गोरखपुर के प्राचार्य श्री अभिषेक पांडे जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी गोरखपुर को हमें आमंत्रित करने के लिए।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो व्यावसायिक शिक्षा है वो आखिर है क्या?
2: जी, व्यावसायिक शिक्षा सामान्य रूप से हम अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मैकेनिकल क्षेत्र में, जो ब्यूटिशियन के रूप में, या किसी होटल में होटल के सर्विस स्टाफ के रूप में, हेल्थ केयर सेक्शन में, या डिजाइनिंग के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, ऐसे वे लोग जो कौशल तो रखते हैं और उन कौशल को प्रमाणिक रूप से किसी संस्था के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वह उस कौशल के विशेषज्ञ हैं। यह व्यावसायिक शिक्षा का मूल है। इसमें हम एक चीज और बताना चाहेंगे अपने श्रोतागण को कि व्यावसायिक शिक्षा एक तो वह जो किसी संस्था से व्यक्ति प्रशिक्षण लेके आया है और किसी जगह पे प्रशिक्षण दे रहा है या उस कार्य को कर रहा है, अपने रोजगार को संपन्न कर रहा है। एक वह जो किसी उस्ताद से सीख के आया है और अपने कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है और कार्य कर रहा है। सामान्य अर्थों में व्यावसायिक शिक्षा यही है।
1: जी अभिषेक जी, ये बताएं कि जैसे एकेडमिक शिक्षा होती है और व्यावसायिक शिक्षा होती है, चूंकि दो अलग अलग शब्द हैं, तो हम इसमें अंतर कैसे करें, क्या समझते हैं हम इन दोनों शब्दों से?
2: जी, शिक्षाविद और हमारी जो शिक्षा नीति है वह इन दोनों के बीच विभेद करना नहीं चाहती है, लेकिन सामान्य जन के बीच एकेडमिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके आगे की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे एकेडमिक शिक्षा के रूप में देखते हैं, जो कि किसी संस्था से जुड़ के ही होता है। जबकि व्यावसायिक शिक्षा दो रूपों में पाया जाता है, एक तो किसी संस्था के द्वारा, अभी हमने पहले बताया, और दूसरा वह जो किसी उस्ताद के द्वारा हम सीखते हैं, किसी स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हैं, वह व्यावसायिक शिक्षा। ये दोनों के बीच में अलग अलग हम इसी रूप में देख पाते हैं।
1: जी अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आखिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या बात कही गई है, और इससे पहले भी क्या कुछ योजना इसके विषय में रही है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक हैं, जो कि शिक्षा जगत के लिए ऋण के रूप में, आधार के रूप में काम आएगा। लेकिन अगर हम इसके इतिहास को देखें, कि विकास यात्रा को देखें, तो व्यावसायिक शिक्षा की विकास यात्रा बड़ी प्राचीन है। प्राचीन काल में हम वैदिक समय से लेके मध्यकालीन समय और इसके बाद स्वतंत्रता तक देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय को पारंपरिक तौर पे करते थे, और उस व्यवसाय में उनके लगे होने और उस कला को सीखना और उसे अपने रोजगार के रूप में तब्दील कर देने की प्रथा पाई गई है। लेकिन संस्थागत संरचना के अभाव के कारण वह व्यावसायिक शिक्षा प्रमाणिक या संस्थागत नहीं मानी जाती थी। इसके बाद जब हम मध्यकाल के बाद आते हैं, तो स्वतंत्रता के पहले हमें बहुत सारे ऐसे कमीशन्स और आयोगों के द्वारा ऐसे रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए गए जो व्यावसायिक शिक्षा पे ठीक मात्रा में अपनी बात को रखे, सुझाव दिए और बहुत सारे ऐसे विचार लेके आए जो व्यावसायिक शिक्षा को एक सही दिशा प्रदान करे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं 1882 से 1883 में हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे शिक्षा को दो स्तर पे बांटा। पहला, उन्होंने लिटरेरी ग्रुप के एजुकेशन को रखा, जो छात्र आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वह लिटरेरी ग्रुप का सब्जेक्ट रखता था। लेकिन कोई ऐसा छात्र जो हाई स्कूल या इंटर के बाद ही व्यवसाय में या रोजगार में जाना चाहता था, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसे कि वोकेशनल एजुकेशन के रूप में हम जानते हैं, और वह करियर ओरिएंटेड था। इसके बाद हम हंटर कमीशन के बाद देखते हैं सैडलर कमीशन 1917 में आया था, उसने भी व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना पे जोर दिया था कि वोकेशनल कॉलेज बने। उसके अलावा हार्टोक समिति, सप्रू समिति और गांधी जी की जो वर्धा योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर है व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि यह बताते हैं कि कैसे व्यक्ति कला के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करके सीधे रोजगार से जुड़ सकता है। प्रमाणिक रूप में यह स्वतंत्रता के पूर्व के महत्वपूर्ण प्रयासों में से थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास रहे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास हुए हैं वे प्रयास सबसे पहले मुदलियार कमीशन 1953 में आता है और वह व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसके लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर जोर देता है।
1: जी अभिषेक जी, आपने इतने वृहद स्तर पर हमें इसके बारे में बताया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं।
2: जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे मैं बात करूं, उसके पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि एक कोठारी कमीशन डीएस कोठारी जी की अध्यक्षता में बना था, जिसके रिकमेंडेशंस के आधार पे पहली बार एनईपी 1968 बना था। उसके बाद 1986 का भी एनईपी बना और 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 के शिक्षा नीति में हम पाते हैं कि वहां भी अच्छे खासे रिकमेंडेशंस जो है कि प्रस्तुत किए गए थे और उन्हीं के अगले क्रम में हम देखते हैं कि एनईपी 2020 के जो प्रमुख रिकमेंडेशन है जो आपने अभी प्रश्न रखा उस पर मैं बताना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस में सबसे पहले तो ये है कि जो वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन है इसके बीच, इन दोनों स्ट्रीम के बीच कोई अलगाव न देखा जाए, नामांकन बढ़ाया जाए, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया गया, क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जिससे कि कोई छात्र वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है उसके साथ साथ वो जो है कि एकेडमिक पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो पाए, और यह क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ मांग आधारित वोकेशनल एजुकेशन पे बात की गई कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है उस क्षेत्र में उस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स को डेवलप किया जाए, संस्थानों को एस्टेब्लिश किया जाए और ऐसे प्रशिक्षकों को उस क्षेत्र में भेजा और तैयार किया जाए जो उस क्षेत्र की नीड को पूरा कर सके। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उसमें रहा शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या थी कि कम्प्रिहेंसिव और स्पेशलाइज्ड शिक्षा को प्रदान करने के लिए सेगमेंट में स्पेशल सेगमेंट के आधार पर कोर्स को डेवलप करना होगा और जो भी छात्र ऐसे कोर्सेज को चुनते हैं उसमें, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर कोई एसी बनाने में या कोई इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, कोई ब्यूटीशियन के क्षेत्र में जाना चाहता है या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वह अगर कोर्स 2 या 3 महीने में कम्प्लीट हो सकता है तो उतना करे और उस क्षेत्र में अपने रोजगार को प्राप्त कर पाए।
1: जी अभिषेक जी, इस नीति के लागू होने के बाद डायट संस्थानों की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है?
2: जी, डायट संस्थान जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाने जाते हैं वह व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 1987 से ही निभाते आ रहे हैं। डायट में एक अनुभाग पाया जाता है जिसे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के नाम से जाना जाता है, डीआरयू यूनिट। इसमें एक क्लास 2 का अधिकारी पीएस उसको प्रभारी बनाया जाता है, अभी भी ऐसी व्यवस्था है और उनको यह व्यवस्था दी गई है कि हर जिले के जो स्पेशल रिसोर्स हैं, जो विशेष संसाधन है, उन संसाधनों को वो बुलाए। जैसे कि पहले डायट्स में क्राफ्ट की ट्रेनिंग, चटाई कैसे बनाए, मोमबत्ती कैसे बनाए, जैसे अपने गोरखपुर में अगर हम देखें तो टेराकोटा का ये गढ़ है और टेराकोटा के मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हें कैसे बनाया जाए, वो कलाकृतियां कैसे बनाई जाए, उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाते थे। तो डाइट का यह प्रयास 1987 से चला आ रहा है, अब धीरे धीरे एनईपी के लागू होने के बाद इसमें और विस्तार मिलेगा।
1: जी, क्या आपको लगता है कि व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से शुरू करना व्यावहारिक होगा?
2: जी, रोजगार ड्रॉप आउट रेशियोज को जब हम देखते हैं कि बच्चे किस उम्र से क्लास को छोड़ देते हैं या विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, तो शिक्षाविदों ने पाया है कि लगभग यह उम्र 12-13 की उम्र ऐसी होती है जब बच्चे क्लास 6-7 में होते हैं तो उस वक्त ही वो विद्यालयों को छोड़ते हैं और ड्रॉप आउट रेशियो विद्यालयों में बढ़ता है

0: और वह कहीं न कहीं किसी दुकान पे किसी ऐसे उस्ताद के साथ जुड़ जाते हैं जो उन्हें एक स्पेशल क्वालिटी उनके अंदर स्किल का डेवलप करते हैं और वह उसी क्षेत्र में अपने कार्य को, कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कोई बाइक बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खेती में लग गया है, ऐसे किसी भी क्षेत्र को लग जाते हैं। तो शिक्षाविदों ने काफी मंथन के उपरांत इस बिंदु को रखा है।
1: लोक विद्या एक शब्द अक्सर चर्चा में आता है, तो लोक विद्या क्या है?
0: जी जी मैडम, ये एनईपी ने एक शब्द दिया लोक विद्या। इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हमने देखा है और शिक्षाविदों ने एक बहुत ही मंथन के बाद इस चीज को, जो हमारी परंपरागत स्किल है कि कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई कृषि के क्षेत्र में कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है, कोई जैविक खेती के संदर्भ में व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसे जो पुराने लोग हैं जैसे टेराकोटा अपने गोरखपुर में, कहीं जो इसमें ओडीओपी के जो भी सेगमेंट आते हैं, कहीं केले के पत्ते पे, कहीं ढोलक बन रहा है, तो ये जो लोक किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित परंपरा आधारित व्यवसाय को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और उनके योग्य लोगों को, जो योग्य प्रशिक्षक हैं उनको, उनकी एक टीम बनाई जाएगी जो प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में काम आएंगे। और एनईपी का यह रिकमेंडेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन है।
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक और प्रश्न अभिषेक जी की, इस नीति के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण में कौन कौन से नवाचार जोड़े गए हैं?
0: जी, शिक्षकों के प्रशिक्षण में नवाचार के संदर्भ में अगर हम देखें तो आए दिन जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ट्रेनिंग संस्थान हैं, वो नए नए विषयों को लेके, वो चाहे एकेडमिक क्षेत्र के विषय हों या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के विषय हों, उनमें काफी कुछ प्रगति की जा रही है। जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आप आईटीआईज को देखिए तो आईटीआईज में या प्रधानमंत्री कौशल विकास जो केंद्र है उनमें ऐसे प्रशिक्षणों को आयोजित कराया जा रहा है जिसमें व्यक्ति उस क्षेत्र विषय की विशेषज्ञता को हासिल कर पाए।
1: आप किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को स्थानीय स्तर पर अधिक उपयोगी मानते
0: हैं? जी, यह प्रश्न काफी अच्छा है कि हर क्षेत्र की अलग नीड है। कि अगर हम कोस्टल एरिया में जाएं तो कोस्टल एरिया में जो जल आधारित व्यवसाय है, अगर उस क्षेत्र का प्रशिक्षण वहां पर दिया जाए तो वह प्रशिक्षण काफी सफल होगा और लोगों को अपने स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में मदद देगा। ऐसा प्रशिक्षण जो बेम्बू, मान लीजिए बेम्बू से संबंधित है, कोई प्रशिक्षण कांसे से संबंधित है, तांबे से संबंधित है, तो वो जो क्षेत्र, वह भौगोलिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको उस क्षेत्र में अगर प्रशिक्षण दिया जाए, तो एनईपी के रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन है भी कि क्षेत्र आधारित जो वोकेशन है, जो कार्य है, उनको, उनका चिन्हीकरण किया जाए, उनके हिसाब से उनके कोर्सेज डेवलप किए जाए और वहां पे उसी के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाओं को एस्टेब्लिश किया जाए।
1: ये व्यावसायिक शिक्षा के स्लो प्रोग्रेस, जो व्यावसायिक शिक्षा आजकल धीमी रफ्तार से ये चल रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: ठीक बात है कि व्यावसायिक शिक्षा में प्रोग्रेस जितने प्रयास किए जा रहे हैं उसकी तुलना में कम है। कुछ कारण ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे व्यावसायिक जो केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहां पे धन की समस्या, वित्त पोषण की समस्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है और ट्रेनिंग फैसिलिटी में संसाधनों की कमी होना, इस व्यावसायिक एजुकेशन को पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखा जाना और यहाँ पे प्रशिक्षकों का भी अभाव, योग्य प्रशिक्षकों का अभाव भी एक बड़ा कारण है जो व्यावसायिक शिक्षा को अपनी गति पकड़ने नहीं दे रहा है।
1: क्या इस नीति के तहत किसी छात्र को कौशल आधारित स्वरोजगार की ओर भी प्रोत्साहित किया जाता है?
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, इस बारे में सरकार के कुछ प्रयासों के बारे में आप बताना चाहेंगे?
0: देखिए, जब से व्यावसायिक शिक्षा को हम, अभी इसके विकास यात्रा को जब हम बात कर रहे थे, तो तब से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयास हो रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास फरवरी 1988 में हुआ था जब केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया गया था और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य और यूटीज को वित्त का आवंटन किया गया, जिनके माध्यम से वे अपने लोकल नीड का सर्वे करें, कोर्स मटेरियल तैयार करें, ट्रेनिंग में प्रशिक्षकों को बुलाएं और एनजीओ का सहायता लें, एनजीओ के माध्यम से उन प्रशिक्षणों को करें। इसके बाद धीरे धीरे स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, लगभग भारत में 721 से अधिक केंद्र हैं, इसको डिलीट किया जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, पीएम युवा योजना, संकल्प योजना जिसमें SC/ST क्षेत्र के जो वर्ग के बच्चे हैं उनमें क्षमता निर्माण पे जोर दिया गया है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स आई जो कि काफी अधिक मात्रा में क्राफ्ट

0: के क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिनके माध्यम से इनको प्रशिक्षित किया जाए और वोकेशनल एजुकेशन की सफलता को दर को बढ़ाया जा सके।
1: जी अभिषेक जी, अभिषेक जी ये बताइए कि ये प्रशिक्षण की बात तो मोटी मोटी हो गई, लेकिन ये रोजगार में कैसे मदद करते हैं, इस विषय में कुछ बताएं।
0: जी अच्छा प्रश्न है। जैसे ये प्रशिक्षण, इसके लिए सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है कि हम इंडस्ट्रियल लिंकेज को बढ़ावा दें। इंडस्ट्रियल लिंकेज का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे गोरखपुर में अगर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, या यहाँ पे हॉस्पिटलिटी सेक्टर को, या हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो बच्चा प्रशिक्षण लेके आ रहा है कि नर्सिंग का कोर्स कैसे करे या हॉस्पिटैलिटी के कोर्स को लेकर आ रहा है, तो उसे उनको जोड़ने पे अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं या उनको जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिंकेज जिसे कहा जाता है, तो यह काफी मददगार साबित होगा।
1: जी, इस व्यावसायिक शिक्षा में कहीं कोई चुनौतियां जो सामना करना पड़ रहा है आजकल?
0: बिल्कुल, पाठ्यक्रम का विकास अभी पुराना ही है, पाठ्यक्रम पे हमें काम करने की जरूरत है। और औद्योगिक लिंकेज अभी हम बता रहे थे कि इसका अभाव है कि योग्य लोग अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, एक्सेस नहीं उनको मिल पा रहा है, और जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, संसाधनों का अभाव देखा जा रहा है, ड्रॉप आउट रेशियो अधिक है, और जो पूर्वाग्रह है कि एक व्यक्ति जो है कि बाइक बनाने की ट्रेनिंग ले रहा है, मैकेनिकल ट्रेनिंग ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के काम करने का ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको लोग लो क्वालिटी का एजुकेशन मान ले रहे हैं, तो एक पूर्वाग्रह भी कहीं न कहीं बड़ी चुनौती है। प्रशिक्षकों, योग्य शिक्षकों का अभाव भी चुनौती के रूप में है। वित्त पोषण की समस्या पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह रहेगा कि जो निजी क्षेत्र है उसकी रुचि भी कम देखी जा रही है। जैसे अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल है, तो आप ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के उपरांत इंटर्नशिप पे अच्छा माहौल दें, उनको इंसेंटिव दें, इसके अभाव भी कहीं न कहीं, निजी क्षेत्र की रुचि का अभाव भी इस क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे जी, आपने बड़ी सहजता और स्पष्टता से हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं और व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता से अवगत कराया। आपके अनुभव, दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र की झलक ने आज के साक्षात्कार को इतना सार्थक बना दिया है कि हमारे श्रोता इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। श्रोताओं, नई शिक्षा नीति सिर्फ कागज पर बदलाव नहीं, ये हमारे बच्चों की सोच, हुनर, भविष्य की दिशा को तय करने वाला एक कदम है। आशा है आज की बातचीत ने आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। इसी के साथ मुझे यानी अंकिता को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, नए विषय और नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर अभिषेक पांडे, प्राचार्य डायट, और इनसे बातचीत कर रही थी अंकिता मिश्र। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
3: ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
3: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज की कलाकार थी रूना लैला। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीर जी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने

0: के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP

0: संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena Siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak, ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।